सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की इस सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति हैं। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद

अब बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर, क्योंकि पुराने नगमों की मिठास और नए गीतों की ताजगी ही हमारे मन को सुकून देती है। तो श्रोता साथियों, तैयार हो जाइए आपकी पसंद के सुपरहिट फिल्मी तरानों के लिए जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों, दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुन ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपणो सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि खेती में लागवा वाली जे लागत है इनु हिसाब हर तेरा को ने आपड़ी जे चीजें है इन्होंने हौजे राखी ने अपने हरते आय ना जरिया ने हौजे बनावी शक। तो अना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक की घना कनी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रहो अपू रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈ બનુ ગીત તો આયશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરા હું અમારે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ભાઈ બનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે ખેતી મેં લાગવા વાળી લાગતનો હિસાબ આપણે હરતે રાખી શકા તો અણા વિશે માટે જાણકારી હાલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી માંગીલાલજી તો સબ તકી પહેલા આપણે હામરી લેણાની વાત અને મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર જી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગર રેડિયો પરિવાર મેં
1: જી ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જોડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ તો સર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ ફસલ કી લાગત કા હિસાબ રખના ક્યું જરૂરી હૈ
1: જી તો દેખિયે બહોત અચ્છા સવાલ હૈ ઓર યે હમારે જો કિસાન ભાઈ હૈ ઉનકે લિયે મહત્વપૂર્ણ હોતા હૈ કિ હમરે જો લાગત હૈ ઉસકે ખર્ચે રખના ઓર ફિર ઉસકા આકલન કરના વો બહોત જરૂરી હોતા હૈ તો દેખિયે એક્ચ્યુઅલી ક્યા હોતા હૈ કિ હમ લોગ ખેતીવાડી કરતે હૈ
0: બિલકુલ
1: લેકિન હમ ક્યા ઉસ ખેતી કે પીછે કિતના બીજ કા જો હૈ કિતના ખર્ચા હુઆ ખાદ કિતના ખર્ચા હુઆ આપકા ઓર અપની મજદૂરી ઘર વાલો કી કિતની લગી બહાર સે અગર કોઈ મજદૂર લગાય તો કિતને લગાય સિંચાઈ મેં કિતના પૈસા ખર્ચ હુઆ આપને કોઈ દવાઈ લાકે ડાલી યા આપને બનાઈ તો ઉસપે કિતના ખર્ચા હુઆ
0: બિલકુલ
1: આપને અગર નિડાઈ ગુડાઈ યા જુતાઈ કરવાઈ હૈ યા બુઆઈ કરવાઈ હૈ તો ઉસમે કિતના પૈસા ખર્ચ હુઆ તો યે જો ખર્ચે હૈ તો અગર હમારે જો કિસાન ભાઈ ઇનકા અગર હિસાબ કિતાબ નહીં રખતે હૈ તો ક્યા હોતા હૈ કિ વો ફિર પતા હી નહીં ચલ પાતા હૈ કિ કિતના આપકો લાભ હુઆ યા કિતની આપકો હાનિ હુઈ તો વો આકલન નહીં કર સકતે
0: બિલકુલ
1: ઓર ઇન ચીજો કા જબ હિસાબ નહીં રખતે હૈ તો આપકો કભી ભી યે પતા નહીં ચલેગા કિ હમને ઉસ ખેત કે પીછે યા ઉસ ફસલ કે પીછે કિતની મહેનત ઓર કિતના પૈસા ખર્ચ કિયા હૈ
0: બિલકુલ
1: તો ઉસકા ખર્ચા રખના હમ લોગો કે લિયે જરૂરી હોતા હૈ હાં ઠીક હૈ લેકિન જૈસે ઘર કી મજદૂરી હૈ તો ઉસકા આપ અનુમાનિત લગા સકતે કે આપ 3-4 ઘંટે જા રહે હો તો ઉસ હિસાબ સે લેકિન જો અન્ય મહત્વપૂર્ણ ખર્ચે હૈ જો ઉનકા તો હમે હિસાબ રખના જરૂરી હોતા હૈ
0: જી જી
1: જિસમે આપ દેખેંગે કે ઉદાહરણ કે તોર પે આપ દેખસે જૈસે બીજ હૈ તો ખરીદા હુઆ બીજ જો હૈ આપકા કિતના હૈ આપને કિતને કા ખરીદા હૈ ઓર કિતના કિલો બીજ આપને ઘર સે ઉપયોગ કિયા
0: બિલકુલ
1: તો દોનો કા આપ લિખે ઉનકા અનુમાનિત ખર્ચા ઓર જો બાજાર સે અગર આપ ખરીદા હૈ તો ઉસકા જો એક્ચ્યુઅલ હૈ વો આપ લિખે
0: બિલકુલ
1: ઇસી તરહ જૈસે ખેત કી તૈયારી કી હમ બાત કરતે હૈ બુઆઈ સે પહેલે તો આપને જુતાઈ કરવાઈ બુઆઈ કરાઈ યા ખેત મેં તૈયારી કરવાઈ ઉસકે ખરપતવાર હૈ યા ઉસકી સફાઈ કરવાઈ તો ઉસકે પીછે કિતના ખર્ચા હુઆ
0: જી જી
1: યે હમે રખના જરૂરી હૈ इसके साथ में ही हम क्या है कि फसल बोने से पहले खेत में बहुत सारे पोषक तत्व जैसे खाद है कंपोस्ट है जैविक खाद है तो ये सब डालते हैं
0: जी जी
1: तो आपने कितना डाला उनकी मात्रा और अनुमानित जो है कि इतना पैसे का कम से कम जो है हमारा खाद था तो वो रखना जरूरी है इसके साथ में जो हम बात करते हैं जैसे परिवार और जो बाहर की मजदूरी है उसका भी आप ध्यान रखें कि परिवार के लोग अगर एक बीघा जमीन है तो उसके पीछे कितने दिन अपने लगे
0: कर रहे हैं बिल्कुल
1: जी जिसमें आपकी निराई गुड़ाई हो गई या आपने खरपतवार निकाला है या उसमें कुछ चारा है वो लिया उससे या आप मान लो 4 घंटे उसकी रखवाली करने जा रही हो
0: बिल्कुल
1: तो इस तरह से जो घर की मजदूरी का भी आप हिसाब रखें इसके साथ में अगर बाहर से कुछ मजदूर आप लगाते हैं तो कितने मजदूर लगे तो वो भी आप हिसाब रखें
0: बिल्कुल
1: इसके साथ में ही सिंचाई की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई है जो सिंचाई कई किसान है जो हमारे नहर उसी सिंचाई होती है कहीं जो पंप है कहीं जो बिजली वाले पंप है और कई बार है जो हम डीजल इंजन का उपयोग करते हैं
0: बिल्कुल
1: तो हमें हिसाब रखना चाहिए कि आपने कितना डीजल जलाया उस खेत के पीछे इतनी जमीन के पीछे और कितने पैसे का डीजल लगा आपका इसी तरह से अगर लाइट का बिल है तो आप निकाले कि हाँ इतनी लाइट जो है इस खेती के पीछे खर्च हुई तो मासिक आप उसको दर्ज करें और उसका हिसाब रखें इसी तरह जैसे हमने बात की थी फसल सुरक्षा की तो फसल सुरक्षा में है जैसे कीट प्रबंधन के लिए आपने अगर कुछ दवाई का उपयोग किया हो या घर पे अगर कोई दवाई बनाई हो तो उसके पीछे और उसके पीछे दोनों के पीछे आपका कितना खर्चा हुआ वो भी आप मासिक उसमें लिखें और कितनी बार आपने दवाई बनाई या दवाई लाई इसी तरह जैसे निराई गुड़ाई है इसके आज कटाई है जैसे कटाई की बात करते हैं तो कटाई में आजकल दो तरीके हैं हमारे यहाँ तो परंपरागत का तरीका है हम हाथ से काटते हैं
0: जी जी
1: लेकिन कई जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मशीन से कटाई करवाते हैं या मजदूर लगाते हैं तो आपको जो प्रति बीघा के पीछे आपकी कितनी मजदूरी लगी वो आपको लिखना चाहिए उसका हिसाब रखना चाहिए उसको अगर बाजार में आप बेचने गए या बाजार से आप कुछ लाने ले जाने गए हैं तो उसका परिवहन का जो खर्चा होता है वो भी आप लेके स्पेशल खेती के पीछे। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ये सारे खर्चे हमको लिखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा आपको और ये जान पाओगे आप कि आपने की लागत कितनी रही,
0: बिल्कुल,
1: और लागत की तुलना में आपका लाभ कितना रहा, उत्पादन कितना हुआ।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि फसल की लागत में हमें किन किन चीजों को विशेष तौर पर शामिल करने की जरूरत है, यही जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि अगर ये सारी चीजों की जानकारी हम रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वास्तविक लागत हमें कितनी लग रही है और लाभ हमें क्या मिलने वाला है। यही सर, लागत का हिसाब रखना क्यों जरूरी है, इससे हमारे किसान भाई बहनों को क्या लाभ मिलेगा?
1: जी, तो देखिए लागत और उत्पादन दोनों का हिसाब रखना इसलिए जरूरी है कि आपके खेत में अगर मान लो आपके पास 5 बीघा जमीन है,
0: बिल्कुल,
1: तो 5 बीघा जमीन के पीछे आपका कितना खर्चा हुआ और अंत में उसमें कितना उत्पादन हुआ।
0: जी जी।
1: मान लो कि आपको 20,000 रुपए का खर्चा हो गया 5 बीघा के पीछे और उत्पादन आपके वहाँ 30,000 हुआ। मान लो अगर आपके पास हिसाब नहीं है तो आप 20 में से 30 का पता नहीं कर पाओगे। आपको या तो सब ऐसा ही लगेगा बहुत सारा 30,000 की पैदा हुई है टोटल, लेकिन उसके पीछे कितना खर्चा हुआ वो आप उसका आकलन नहीं कर पाओगे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक जरूरी है इसके कारण। दूसरा कि जब क्या होता है कि हम लोगों को जब हम लागत और इस सारी चीजें जोड़ते हैं तो हमें ये लाभ होता है कि हमें कौन सी फसल जो ज्यादा लाभदायक रही।
0: बिल्कुल।
1: अगर हर फसल का आप हिसाब रखते हो तो आप अगर मक्का है, तुअर है, अगर मूंग है, उड़द है या आपने मूंगफली करी है, तो इनके पीछे क्या है कि आपको पता रहेगा कौन सी फसल ज्यादा फायदेमंद है और कम पैसा किसमें खर्च होता है।
0: जी जी।
1: ये लाभ होगा। दूसरा है कि आपको पता चलेगा कि अगले मौसम में आप उसके और बेहतर योजना बना सकते हो। हो सकता है कि आपके अनुसार जो खाद बीज और मजदूरी बहुत ज्यादा लगी हो जैसे मक्का के पीछे, लेकिन अगर अगली बार आप सोचेंगे तो आप लोगों की तुअर उसमें लगा सकते हैं। तो योजना बनाने में आपका वो जो हिसाब किताब है वो आपको काफी मदद करता है। दूसरा कि कभी कभी क्या होता है कि हमें अंत में पता लग जाता है कि 5,000 का हमारा ऐसे ही खर्चा हो गया, मतलब अन्य खर्च हो गए, जैसे जरूरत ही नहीं थी लेकिन हमने खर्च कर दिया।
0: जी जी।
1: तो इसमें क्या होता है कि अगली बार आप करोगे तो आपको पता रहेगा कि 5,000 का खर्चा मैं कम कर सकता हूँ, तो वो आप वहीं से निकाल पाओगे जब आपके पास हिसाब रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह जैसे बाजार में सही कीमत तय करने में भी मदद करता है कि जैसे हम मक्का के पीछे मान लो आपने 5 बीघा मक्का है तो आपको 25 क्विंटल उत्पादन हुआ, 25 क्विंटल के पीछे आपने अगर मान लो कि 20,000 या 10,000 जो भी खर्चा हुआ तो उसका हिसाब रहेगा, तो आप जो है हमेशा ये सोच के उसको बेचेंगे कि मुझे कुछ तो लाभ होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अन्यथा क्या होता है कि खेत में कितना भी खर्चा हुआ, कितना भी लगा और जैसे निकली और हम बाजार में ले जाते हैं
0: जी हाँ।
1: तो वहां आपको भाव है उसकी उतना नहीं मिलेगा, वो 10-12-15 रुपए किलो आपसे ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या है कि वो हमारे अंदर एक चीज, एक सोच विकसित करता है वो हिसाब किताब जो हम रखते हैं कि हाँ मेरा इतना तो खर्चा हुआ, कम से कम मुझे लाभ होना चाहिए, तभी मैं इसको सेल करूंगा या बेचूंगा। तो ये एक फायदा होता है। दूसरा है कि परिवार की जो मेहनत होता है उसको हम कभी गिनते नहीं है, लेकिन वो भी तो एक मेहनत है।
0: जी हाँ।
1: तो उसका एक जो मेहनत है उसके मूल्य समझ आता है हमको कि हाँ अगर मान लो आपने 1 बीघा के पीछे अगर 30 दिन लगा दिया तो 30 दिन में अगर 1 बीघा में 5 क्विंटल हुई तो 30 दिन का आप 300 के हिसाब से आप जोड़ते हो पैसा, तो आपका 3-9 हजार तो आपका जो है मजदूरी लग गई उसके पीछे, जबकि उसमें इतना पैदा ही नहीं हुआ। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें आपको मदद मिलती है। दूसरा कि खेती को और कैसे बेहतर किया जा सकता है अधिक लाभ कमाने के लिए, वो सोच आपके अंदर विकसित होगी इन चीजों को लेकर। तो इन सारी चीजों को हम दोनों लोगों को पता होना चाहिए और उसका भी एक बढ़िया से आप मोटा मोटा लिख सकते हो कि मैंने इस महीने में ये 5 किलो बीज बोया था।
0: बिल्कुल।
1: और इसका इतना रुपया हुआ, 5 किलो मैंने घर से बीज लाया और इसका इतना रुपया हुआ। तो इस तरह जो है आप उन खर्चों का जो है पूरा हिसाब किताब रखें।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई बहनों को जो खेती का हिसाब है अगर वो रखते हैं तो किस तरीके से कई सारे फायदे मिलते हैं।
1: जी।
0: यही सर, अब आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे खेती में मिलने वाली जो लागत है उसका हिसाब रखते हुए उन्हें लाभ भी मिल पाए और आय का जो स्रोत है वो पहली बार उन्हें उसमें लाभ नहीं मिल रहा है तो अगली बार वाली जो खेती है उसमें उस लाभ को वो प्राप्त कर पाए और अपने आजीविका को सुचारू रूप से चला पाए।
1: जी, तो मैं सभी किसान भाइयों से यही संदेश देना चाहूंगा कि आज से हर किसान अपनी फसल के खर्च का जो छोटा से छोटा हिसाब है वो रखना शुरू करे। छोटा हिसाब भी हो सकता है आपका बड़ा बदलाव लेकर आए।
0: बिल्कुल।
1: तो आप हमेशा हिसाब रखे, उसका आकलन करें और अगले साल की या अगली फसल की प्लानिंग करें।
0: बिल्कुल सर। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: जिम की बहन बोनो अवड़े अपने वैस में मंगीलाल जी जुड़े तक कहा था ने एने अपना ने घनी अशल तरीका थे की घना कानी वाते बताड़ी है। आशा कर रहा हूँ की हंगरी वाते आपने गमी होंगा किम के भी टाइम थे गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक सूटा पड़वा नु। तो सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लायक और गीत मोरे पड़ा सूटा।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
2: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाई बोनो आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची सकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू भारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
2: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, हम जब भी हाजिर होते हैं कार्यक्रम के माध्यम से तो हमारी आपसे बातचीत का एक नया विषय होता है। तो आज भी श्रोता साथियों, हम एक ऐसे ही नए विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा विषय है बच्चों में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। जी हाँ श्रोता साथियों, जरा याद कीजिए, जब हम कोई काम करने की कोशिश करते थे और पहली बार में उस काम को नहीं कर पाते थे, तब हमें श्रोता साथियों सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती थी? डांट की, या श्रोता साथियों किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमारे पास बैठकर कहे कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। श्रोता साथियों, बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बच्चा जब बार बार सुनता है तुमसे नहीं होगा, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे है, तुम हमेशा गलती करते हो, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि धीरे धीरे बातें हैं वो उनके मन में घर कर जाती हैं। फिर एक दिन वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन साथियों, अगर उसी बच्चे से अगर कहा जाए गलती हुई है, तुम गलत नहीं हो, अभी नहीं आएगा तो सीख जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोशिश करो, तो श्रोता साथियों उसके अंदर एक नई हिम्मत जन्म लेती है। तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो इसी दस्तूर को निभाते हुए आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुकी हूँ कि आज हमारा बातचीत का विषय है बच्चों में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी बच्चे से गलती होती है तो हम उसे डांट कर या उसकी गलतियां गिनाकर उसे बार बार बोलते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उस बच्चे का आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और अगली बार वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। तो श्रोता साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बच्चा कोई काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें उसका साथ देना है। अगर उसका आत्मविश्वास कम हो जाए तो हमें कहना है कि तुम कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा तो हम तुम्हारे साथ ही, तुम कोशिश तो करो एक बार। तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि इन्हीं बातों की वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास आता है और उस काम को वो अच्छी तरीके से करने की कोशिश करता है। तो श्रोता साथियों, इसी विषय पर आधारित सुनते हैं कार्यक्रम का यह नाटक।
1: आरजू, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। पहले कितना खुश रहता था, हर चीज के बारे में पूछता था, नई नई चीजें करने की कोशिश भी करता था, लेकिन अब कोई काम दे दो तो पहले ही कह देता है मुझसे नहीं होगा।
2: अच्छा, तुमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों लगता है उसे?
1: पूछती हूँ, लेकिन वह ज्यादा कुछ बताता ही नहीं, बस चुप हो जाता है।
2: अच्छा, और जब वो कोई काम गलत कर देता है तब तुम क्या करती हो?
1: सच बताऊँ, कभी समझाती हूँ तो कभी गुस्से में डांट देती हूँ।
2: ओ, क्या कभी तुमने उससे ये कहा है कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, या फिर देखो दूसरे बच्चे तुमसे कितने अच्छे हैं?
1: हाँ, ऐसा तो मैंने कई बार कहा है।
2: सुमन, शायद तुम्हारा उद्देश्य उसे बुरा महसूस कराना नहीं था, तुम तो चाहती थी कि वह अच्छा करे, है ना?
1: हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि वह आगे बढ़े।
2: हाँ, लेकिन कभी कभी हमारी चिंता ही हमारे बच्चे के मन में डर पैदा कर देती है।
1: तो क्या आरजू, बच्चे को उसकी गलती पर कुछ कहना ही नहीं चाहिए?
2: क्यों नहीं, गलती समझाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे की गलती और बच्चे को एक ही चीज मत समझो।
1: मतलब?
2: अगर बच्चे ने गणित का सवाल गलत किया है तो ये कहो, चलो देखते हैं सवाल कहाँ गलत हुआ है। ये मत कहो कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात बच्चे को सुधारने का रास्ता देगी, जबकि जो दूसरी बात है वो उसे अपने बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर सकती है।
1: और दूसरों से तुलना?
2: तुलना करने के बजाय उसकी अपनी प्रगति देखो। अगर कल वह 2 लाइन पढ़ता था और आज 4 लाइन पढ़ रहा है, तो उन 4 लाइनों की खुशी मनाओ। अगर पहले वह किसी के सामने बोलने से डरता था और आज उसने 2 वाक्य बोले हैं, तो उसकी उस हिम्मत को पहचानो।
1: यानी कि आरजू, छोटी कोशिश भी बच्चों के लिए बड़ी बात हो सकती है।
2: बिल्कुल हो सकती है, कई बार हमारी नज़र में जो छोटी बात होती है ना, वही बच्चों के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है।
1: मैं अक्सर उसे कहती हूँ कि तुम कर सकते हो।
2: हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस इतना कहना काफी नहीं है।
1: तो फिर और क्या करूँ?
2: जब बच्चा किसी काम से डर रहा हो तो उससे कहो कि चलो पूरा काम अभी नहीं करते, पहले थोड़ा सा करके देखते हैं, और जब वह असफल हो जाए तो उससे कहो कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार तुम क्या बदल सकते हो। और जब वह अपनी बात बताना चाहे तो कुछ देर अपना काम रोक कर उसकी बात सुनो।
1: इससे आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा?
2: जब बच्चे को लगता है कि उसकी बात सुनी जाती है सुमन, और उसकी कोशिश देखी जाती है, उसकी गलती पर उसे अपमानित नहीं किया जाता है।

0: तब उसके मन में धीरे धीरे ये भरोसा बनता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं कुछ नया सीख सकता हूँ और मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। और यही एक बच्चे का आत्मविश्वास होता है।
1: अच्छा, ऐसा क्या? आरजू, आज मुझे अपनी एक बात याद आ रही है। कल मेरे बच्चे ने अपने हाथ से एक चित्र बनाया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कह दिया कि कैसा बनाया है, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे चित्र बनाते हैं। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप चित्र लेकर चला गया।
0: हाँ, शायद हो सकता है कि उस समय उसे चित्र से ज्यादा तुम्हारे शब्द याद रह गए होंगे।
1: हो सकता है, अब मुझे बुरा लग रहा है, और तब उसका चेहरा पूरा उतर गया था।
0: अच्छा, तो तुम बुरा मत मानो। सबसे जरूरी बात तो ये है कि अब तुम्हें समझ आ गया है। अगली बार वह जब चित्र बनाए तो उससे तुम पूछना कि तुमने इसमें ये चीज क्यों बनाई। उसकी कल्पना के बारे में बात करना। जरूरी नहीं है सुमन कि हर चित्र सुंदर हो, लेकिन बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी कोशिश और उसकी कल्पना की कद्र की जाती है।
1: मैं समझ गई। बच्चों को हर बार ये बताना जरूरी नहीं है कि वह सबसे अच्छा है। उसे ये महसूस कराना जरूरी है कि तुम्हें सीखने और कोशिश करने का पूरा हक है।
0: बिल्कुल सुमन।
1: एक बात और बताओ अर्जुन।
0: वो क्या?
1: सकारात्मक सोच का मतलब बच्चों को हमेशा खुश रखना होता है क्या?
0: नहीं सुमन, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कभी दुखी या निराश ही ना हो। अगर बच्चा असफल हुआ है तो उसे दुख हो सकता है, डर लग सकता है और गुस्सा भी आ सकता है। ऐसे में हमें उसकी भावनाओं को दबाना नहीं है। हमें ये कहना है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, ये ठीक है, लेकिन अब सोचते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। यानी कि बच्चे को परेशानी से भागना नहीं, बल्कि परेशानी के बाद रास्ता खोजना हमें सिखाना है।
1: बिल्कुल, अब समझ आया। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हर चीज अच्छी ही होगी, बल्कि यह है कि मुश्किल आने पर भी हम सोचे इससे आगे कैसे बढ़ना है।
0: बिल्कुल।
2: श्रोता साथियों, बच्चों का आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं बनता, यह रोज हमारे व्यवहार, हमारी भाषा और हमारे छोटे छोटे फैसलों से बनता है। इसीलिए अगली बार जब आपका बच्चा गलती करे साथियों, तो उसे तुरंत फैसला मत सुनाइए। जब वह किसी काम से डरी तो उसका मजाक मत बनाइए। जब वह दूसरे बच्चों से पीछे रह जाए तो उसकी तुलना मत कीजिए। बस श्रोता साथियों, उसके पास बैठिए और इतनी सी बात बोलने की जरूरत है कि कोई बात नहीं, सीखने में समय लगता है। जी हाँ श्रोता साथियों, जब वह बच्चा कोशिश करे तो उसकी कोशिश जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा बड़ी सफलता की जरूरत नहीं होती है। कई बार उसे सिर्फ यह जानना होता है कि उसकी छोटी सी कोशिश भी किसी ने देखी है। और श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि माता पिता के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि बच्चों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे मुश्किल का सामना करने का भरोसा दीजिए। उसके लिए हर रास्ता आसान मत बनाइए, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाइए कि वह मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सके। उसे हर सवाल का जवाब मत दीजिए। कभी कभी अपने बच्चों से पूछिए, तुम्हारे हिसाब से इसका क्या हल हो सकता है? क्योंकि श्रोता साथियों, जब बच्चा खुद सोचता है, खुद कोशिश करता है और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानता है, तभी उसके अंदर एक मजबूत आवाज जन्म लेती है, हाँ मैं कर सकता हूँ। और याद रखिए साथियों, बच्चों का आत्मविश्वास उसकी उपलब्धियों से पहले पैदा होता है। पहले उसे विश्वास मिलता है, फिर वह कोशिश करता है, कोशिश से अनुभव मिलता है और अनुभव से सफलता। इसीलिए आज से ही बच्चों को सिर्फ यह मत सिखाइए कि जीतना कैसे है, उन्हें यह सिखाइए कि हार के बाद खुद को कैसे संभालना है, गलती के बाद फिर से कैसे शुरू करना है और डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है। यही सकारात्मक सोच श्रोता साथियों, असली आत्मविश्वास है। और शायद एक माँ के रूप में आज अपने बच्चों से एक जरूरी बात जरूर कहिए, तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सीखते रहने की कोशिश करने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो साथियों, आज अपने बच्चों से एक बात जरूर कहिए, मुझे तुम पर भरोसा है। हो सकता है श्रोता साथियों कि यह शब्द आपके लिए सिर्फ चार शब्द हो, लेकिन किसी बच्चे के लिए यही चार शब्द उसके अंदर की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसी विश्वास के साथ साथियों, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
1: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाई विडिपाई चिकि चक चो गिलिगिली मल सुलुसुलु मल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकि चक चो।

0: सुगुनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है भविष्य के परिणामों में न उलझे आज के प्रयास पर ध्यान दें।
0: जी
1: कहने का तात्पर्य यह श्रोता साथियों कि जिंदगी में हम सभी के सामने कोई न कोई लक्ष्य होता है। कोई परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता है कशिश, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो कोई अपने परिवार और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोताओं कई बार लक्ष्य तक पहुंचने की चिंता इतनी बढ़ जाती है कि हम वर्तमान में किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों को ही भूल जाते हैं। हम हर बार सोचते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो क्या होगा, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा। साथियों यही सोच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को प्रभावित करने लगती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए आज हम बात करेंगे कि भविष्य की चिंता में उलझने के बजाय वर्तमान के प्रयासों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो बातें ढेर सारी हम करेंगे हमारे युवा साथियों से, लेकिन शुरुआत जैसा कि हम हर बार गीत संगीत के साथ करते हैं, तो क्यों ना आज भी पहला गीत हमारे दोस्तों को हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय भी आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि भविष्य के परिणामों में हमें नहीं उलझना है बल्कि आज के प्रयासों पर ज्यादा ध्यान देना है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि भविष्य के बारे में सोचना वैसे गलत नहीं है बल्कि श्रोता साथियों, अपने भविष्य की योजना बनाना तो एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब योजना बनाने की जगह हम लगातार परिणामों की चिंता करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि मान लीजिए कि किसी युवा को परीक्षा देनी है, वह पढ़ाई करने के बजाय लगातार यही सोचता रहे कि उसके कितने अंक आएंगे।
1: बिल्कुल,
0: परिवार क्या कहेगा, दूसरे उससे आगे निकल जाएंगे तो क्या होगा, और इन सब चीजों की वजह से उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट जाता है। इसके विपरीत अगर वह यह सोचे कि आज मुझे 2 अध्याय पूरे करने हैं, आज मुझे इतने प्रश्न हल करने हैं, आज मुझे अपनी कमियों को समझना है, तो उसका ध्यान उस काम पर ही रहेगा जिसे वह वास्तव में नियंत्रित कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: कहा जा सकता है दोस्तों कि भविष्य की चिंता ऊर्जा लेती है जबकि वर्तमान का प्रयास ऊर्जा को दिशा देता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि युवाओं की बात बहुत समझनी जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन हर परिणाम को नहीं। हम कितनी ईमानदारी से पढ़ेंगे, कितनी तैयारी करेंगे, कितनी बार अभ्यास करेंगे, इन चीजों पर हमारा नियंत्रण है।
0: जी जी।
1: लेकिन श्रोताओं, परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा आएगा, प्रतियोगिता में कितने लोग शामिल होंगे या परिस्थितियाँ कैसी होगी, इन सभी चीजों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जिसे हम बदल सकते हैं।
0: जी
1: परिणाम
0: हाँ।
1: की चिंता कम, तैयारी की जिम्मेदारी ज्यादा करें, और यही सोच युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही युवा साथियों, हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े लक्ष्य देखते हैं, लेकिन उन बड़े लक्ष्यों को देखकर कई बार हमारे युवा साथी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जागृति जी कि मंजिल बहुत दूर है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन किसी भी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत छोटे कदम से ही होती है दोस्तों। अगर कोई युवा एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा तो शायद वह थक जाएगा, लेकिन वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेगा तो समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आज 1 घंटा पढ़ाई, आज 1 नया कौशल सीखना, आज किसी जरूरी काम को पूरा करना और आज अपनी गलती से सीखना, ये कुछ छोटे कदम है जो भविष्य की नींव तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आप खुद से ये पूछिए कि मैं भविष्य में क्या पाऊंगा से पहले आज मैं क्या कर सकता हूँ।
1: जी हाँ, क्योंकि भविष्य के परिणामों की चिंता का एक बड़ा कारण असफलता का डर है। कई युवा किसी काम की शुरुआत ही इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कशिश कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन श्रोता साथियों, असफलता का डर हमें उस अवसर से भी दूर कर सकता है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि कोई युवा किसी प्रतियोगिता की तैयारी करता है और पहली बार सफल नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी मेहनत बेकार होगी। उसे अपनी तैयारी की कमियां समझने का अवसर मिला, अगली बार वो बेहतर रणनीति बना सकता है। इसीलिए कशिश, असफलता को हमारे श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आप अंतिम फैसला मानने के बजाय उसे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा समझना जरूरी समझे।
0: जी हाँ, साथ ही दूसरों से तुलना भी भविष्य की चिंता बढ़ा सकती है युवाओं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के सामने तुलना की समस्या बढ़ गई है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: किसी को सफल होते देखकर हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की परिस्थिति, अवसर, रुचि और गति अलग होती है। किसी और की उपलब्धि देखकर प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी यात्रा को किसी दूसरे व्यक्ति की यात्रा से मापना उचित नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: आपका मुकाबला दोस्तों सबसे पहले अपने कल वाले रूप से होना चाहिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो ये भी आपके लिए एक प्रगति है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि भविष्य के परिणामों में हमें नहीं उलझना है, आज के प्रयासों पर ध्यान देना है। ये बातें निरंतर बनी रहेंगी हमारे युवा साथियों के साथ, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे भविष्य के परिणामों में हमें नहीं उलझना है, हमें आज के प्रयासों पर ध्यान देना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले हमने भविष्य की चिंता स्वाभाविक है लेकिन उसमें उलझना सही नहीं को लेकर बात की थी। साथ ही हमने जाना था कि परिणाम हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है लेकिन प्रयास हमारे हाथ में है। आज का छोटा कदम ही कल की बड़ी उपलब्धि बनता है। साथ ही असफलता के डर से वर्तमान को खराब न करें। इसी के साथ दूसरों से तुलना भी भविष्य की चिंता बढ़ाती है। ये बातें हमने गीत से पहले कर ली थी। यही जानते हैं कशिश की भविष्य की योजना बनाइए लेकिन वर्तमान में जीना मत भूलिए। अक्सर ऐसा होता है कि भविष्य के परिणामों में हम उलझ जाते हैं और हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं।
1: जी जी,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि भविष्य के परिणामों में न उलझे का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भविष्य के बारे में सोचना ही हम छोड़ दें। भविष्य के लिए लक्ष्य जरूर बनाने हैं, समय का सही उपयोग भी करना है, योजना भी बनानी है लेकिन योजना के बाद उस पर काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: उदाहरण के लिए अगर बात करें कि किसी युवा का लक्ष्य सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो उसे परीक्षा की तारीख, पाठ्यक्रम और रणनीति के बारे में जानकारी रखनी होगी।
1: जी,
0: लेकिन हर दिन सिर्फ ये सोचते रहने से कि मेरा चयन होगा या नहीं उसकी तैयारी मजबूत नहीं होगी। उसे सोचना चाहिए कि आज क्या पढ़ना है, आज कितना अभ्यास करना है और आज कौन कौन सी कमी हमें सुधारनी है।
1: बिल्कुल,
0: यही श्रोता साथियों वर्तमान पर ध्यान देना होता है और इससे
1: हाँ,
0: हमारा आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: जी हाँ जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ युवा साथियों, अपने नियंत्रण का दायरा पहचानना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती है और कुछ चीजें नहीं होती है। ऐसे में हमारे नियंत्रण में हो सकती है हमारी मेहनत, हमारी तैयारी, हमारा व्यवहार साथियों, हमारा समय प्रबंधन, हमारी सीखने की इच्छा और गलती के बाद दोबारा प्रयास करने की इच्छा।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हमारे नियंत्रण में हर परिस्थिति, हर व्यक्ति की सोच और हर परिणाम नहीं होता जागृति जी। इसलिए युवा साथियों को अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करनी चाहिए जिन पर वे प्रभाव डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जिस चीज को बदल नहीं सकते उसकी चिंता करने से बेहतर है कि जिस चीज को हम बदल सकते हैं उस पर काम करें।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे, हमें हमारी छोटी छोटी प्रगति को महत्व देना है। कई बार हम अपनी उपलब्धियों को इसीलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम केवल अंतिम मंजिल को देखते हैं। अगर श्रोता साथियों आपने पहले किसी विषय को समझने में बहुत परेशानी महसूस की हो और अब उसमें थोड़ी समझ विकसित हुई हो तो ये प्रगति है।
1: जी, जी।
0: अगर पहले हम अपना जो समय है वो सही तरीके से नहीं संभाल पाते थे और अब रोज का काम समय पर पूरा करने लगे हैं तो ये भी हमारी प्रगति है।
1: जी जी,
0: अगर पहले किसी गलती के बाद हम हार मान लेते थे और अब उससे सीखकर दोबारा कोशिश करते हैं तो ये भी सफलता की दिशा में कदम है।
1: जी,
0: तो दोस्तों कहना चाहेंगे कि हर छोटी प्रगति को पहचानना आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों, जब भी आपको लगे कि भविष्य के परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है तो आप खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछें। पहला ये कि मेरे नियंत्रण में अभी क्या है, दूसरा ये युवा साथियों कि मैं इस समय कौन सा एक काम कर सकता हूँ, और तीसरा ये कि इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए मुझे क्या सीखना होगा।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपको चिंता से निकालकर काम की ओर ले जा सकता है। आप याद रखिए कि युवावस्था जो होती है वो सीखने, प्रयोग करने और अपनी दिशा बनाने का समय है। इस उम्र में जागृति जी, हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। इसलिए युवाओं को केवल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि मैं अपने आज को कितना मजबूत बना रहा हूँ।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मजबूत भविष्य किसी जादू से नहीं बनता युवा साथियों, वह आज की आदतों, निर्णयों, मेहनत और अनुभव से तैयार होता है। आज की मेहनत कल की संभावनाएं बनाती है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि भविष्य के परिणामों में उलझने से बचने के लिए युवा कुछ बातों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने लक्ष्य जरूर बनाइए लेकिन लक्ष्य के डर में मत जाइए। परिणाम की जगह प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटिए, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति को देखिए, गलतियों को अपनी पहचान नहीं अपनी सीख बनाइए और जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ईमानदारी से काम कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: हर दिन के लिए छोटे और वास्तविक लक्ष्य तय कीजिए। असफलता की कल्पना में समय गंवाने के बजाय तैयारी मजबूत कीजिए। श्रोताओं, अपने आज के प्रयासों को महत्व दीजिए। याद रखिए भविष्य आज के फैसलों से बनता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपसे कहना चाहेंगे कि भविष्य एक ऐसी किताब है जिसके सभी पन्ने आज हमारे सामने खुले नहीं है। हम ये निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि आने वाला समय क्या लेकर आएगा, लेकिन हमारे हाथ में आज का दिन जरूर है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज को मत खोइए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो कदम छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कदम रुकना नहीं चाहिए।
1: जी हाँ,
0: अगर रास्ते में कठिनाई आती है तो उसे देखकर घबराने के बजाय रास्ता समझने की कोशिश कीजिए। अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो खुद से पूछिए कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी में हमेशा वही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता कशिश जिसे हर बार मन चाहा परिणाम मिलता है। कई बार आगे वो भी बढ़ता है जो परिणाम चाहे जैसा हो, सीखना और प्रयास करना बंद नहीं करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो युवा साथियों आज की बात सिर्फ इतनी सी है कि भविष्य की योजना हमें बनानी है, लेकिन भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नहीं खोना है। परिणाम की प्रतीक्षा करने से ज्यादा जरूरी है कि आज के प्रयास को हम बेहतर बनाएं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि युवा साथियों कल का परिणाम आज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आज की मेहनत जरूर आपके हाथ में है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में एक संकल्प लेते हैं हम सभी मिलकर कि हम परिणाम के डर में नहीं उलझेंगे, हम अपने प्रयास पर ध्यान देंगे, हम कल की चिंता में आज को नहीं खोएंगे बल्कि आज को बेहतर बनाकर अपने कल की नींव मजबूत करेंगे।
0: बिल्कुल, तो साथियों कल कैसा होगा ये पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज हम क्या करेंगे ये जरूर हमारे हाथ में है।
1: जी हाँ,
0: इतनी सी बात को याद रखते हुए हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का।
1: बिल्कुल।
0: पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है, बेटी की शिक्षा को केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य में निवेश के रूप में सामने रखे। जिस समाज की बेटियां शिक्षित होती है अंजलि, उस समाज की आने वाली पीढ़ियां स्वयं ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: बेटी को पढ़ाना केवल एक बच्चे को शिक्षित करना नहीं बल्कि एक पूरे परिवार, एक पीढ़ी और अंततः पूरे समाज के भविष्य को मजबूत बनाना है। इसलिए बेटी की शिक्षा खर्च नहीं बल्कि समाज का सबसे दूरगामी और सबसे बड़ा निवेश है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को पहले गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है बेटी की शिक्षा को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि अंजलि, बेटी की शिक्षा के महत्व को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो जब एक बेटी पढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, बल्कि एक परिवार की सोच बदलती है, एक पीढ़ी का भविष्य संवरता है और समाज विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए बेटी की शिक्षा को केवल परिवार की जिम्मेदारी या खर्च मानना उचित नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ये समाज और राष्ट्र की उज्जवल भविष्य में किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। श्रोता साथियों, जिस समाज में बेटियों को शिक्षा के अवसर मिलते हैं, वहाँ जागरूकता, आत्मनिर्भरता, समानता और विकास की संभावनाएं अधिक मजबूत होती है। बेटी किसी परिवार की जिम्मेदारी भर नहीं बल्कि परिवार और समाज की शक्ति है। श्रोता साथियों, उनके सपनों को शिक्षा का सहारा मिल जाए तो वह जीवन को नई दिशा देने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है। आज बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, चिकित्सा, तकनीक, कृषि, व्यवसाय और अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। यह परिवर्तन हमें बताता है जागृति जी कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि, आमतौर पर निवेश का अर्थ ऐसी जगह संसाधन लगाना होता है जहां भविष्य में उसका लाभ मिले। यदि यही बात शिक्षा पर लागू करें तो बेटी की शिक्षा से मिलने वाला लाभ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक शिक्षित बेटी अपने परिवार को जागरूक करती है, बच्चों की शिक्षा को महत्व देती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजग रहती है तथा समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। इसलिए बेटी की शिक्षा में लगाया गया समय, धन और प्रयास भविष्य की कई पीढ़ियों को मजबूत करने का माध्यम बन जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, परिवार समाज की पहली इकाई है और बेटी उस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा। जब श्रोता साथियों बेटी शिक्षित होती है तो वह अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझती है। वह परिवार से जुड़े निर्णयों में अपनी राय रखती है और समस्याओं को समझकर उनके समाधान में योगदान दे सकती है।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिक्षा बेटी में केवल किताबी ज्ञान नहीं भरती बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है और यही क्षमता जागृति जी आगे चलकर परिवार को मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा से हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बनती हैं। बेटी की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम आत्मनिर्भरता है। शिक्षा बेटी को अपने हुनर को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर देती है। हमारी जो बेटियां हैं वो नौकरी, व्यवसाय, उद्यमिता, कृषि, तकनीक या किसी अन्य क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, आत्मनिर्भर बेटी, बहन, महिलाएं अपने जीवन के फैसलों को अधिक समझदारी से लेने में सक्षम होती है। वो परिस्थितियों के सामने केवल मजबूर होकर खड़ी नहीं रहती बल्कि समाधान खोजने का प्रयास करती है। यही आत्मनिर्भरता समाज को मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि एक शिक्षित बेटी भविष्य में माँ बनती है तो उसकी शिक्षा का प्रभाव अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। वह अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संस्कारों को अधिक महत्व देती है।
0: जी हाँ।
1: वह बच्चों में प्रश्न पूछने, सीखने और आगे बढ़ने की भावना पैदा कर सकती है। इस प्रकार एक बेटी को पढ़ाने का लाभ केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, उसका ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसलिए बेटियों की शिक्षा वास्तव में पीढ़ियों के भविष्य में किया गया निवेश है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुरीतियों के खिलाफ शिक्षा की शक्ति भी बहुत अलग है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, बताना चाहेंगे कि समाज में समय समय पर अनेक कुरीतियां और भेदभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाल विवाह, दहेज, लैंगिक भेदभाव और बेटियों की शिक्षा को कम महत्व देना जैसी समस्याएं। श्रोता साथियों, समाज के विकास में

0: बाधा बनती है। शिक्षा जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि जागृति जी शिक्षित बेटी अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जान सकती है, वह गलत परंपराओं और भेदभाव को समझने की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा उसे अपने जीवन और भविष्य के प्रति सजग बनाती है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बेटी की शिक्षा के महत्व को लेकर, तो ये बातें निरंतर हमारी बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि हमने गीत से पहले जाना कि किस तरीके से शिक्षा जो है वो कुरीतियों के खिलाफ अपनी शक्ति को दर्शा सकती है, यही बात आती है बेटा बेटी में समानता की। तो जागृति जी, किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब बेटों और बेटियों को समान अवसर मिले।
1: बिल्कुल।
0: यदि परिवार बेटी की शिक्षा को आवश्यक और बेटी की शिक्षा को वैकल्पिक समझता है तो वह अपनी ही आधी शक्ति को विकास से दूर कर देता है। बेटी को स्कूल भेजना ही पर्याप्त नहीं है श्रोता साथियों, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, आवश्यक संसाधन और अपनी प्रतिभा विकसित करने के अवसर भी मिलने चाहिए। समान अवसर ही, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, वास्तविक समानता की शुरुआत है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा का महत्व और भी अधिक है। गाँव की शिक्षित बेटी अपने परिवारों के साथ साथ पूरे समुदाय में जागरूकता ला सकती है। वो स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा, डिजिटल तकनीक, कृषि और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे दूसरों तक पहुंचा सकती है। अगर गांव की बेटियां शिक्षित और जागरूक होंगी तो गांव की नई पीढ़ी भी अधिक जागरूक बनेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि बेटी की शिक्षा ग्रामीण विकास की मजबूत नींव बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: डिजिटल युग में भी बेटियों की शिक्षा महत्व रखती है अंजलि। आज का समय तकनीक और डिजिटल ज्ञान का समय है और शिक्षा अब केवल किताब और कक्षा तक सीमित नहीं रही। इंटरनेट, डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और तकनीकी साधनों ने सीखने के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन इन अवसरों का लाभ तभी लिया जा सकता है जब बेटियों को डिजिटल शिक्षा और तकनीक का सुरक्षित एवं सही उपयोग सिखाया जाए।
0: जी जी
1: श्रोताओं, डिजिटल ज्ञान बेटियों को देश दुनिया की नई जानकारी और नए अवसरों से जोड़ सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि बेटी की शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, वास्तविक शिक्षा वह है जो जीवन जीने की समझ विकसित करे। बेटियों को निर्णय लेने, संवाद करने, समय का सदुपयोग करने, वित्तीय समझ विकसित करने और तकनीकी का सही उपयोग करने और समस्याओं का समाधान खोजने जैसे जीवन कौशल भी सिखाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब शिक्षा ज्ञान के साथ आत्मविश्वास और जिम्मेदारी भी देती है तब उसका प्रभाव और अधिक व्यापक हो जाता है। श्रोता साथियों, बेटी की शिक्षा की शुरुआत घर से होती है। परिवार को उसकी पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि जागृति जी, माता पिता को बेटी की रुचि और प्रतिभा को समझते हुए उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। बेटी को यह महसूस होना चाहिए कि उसके सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने परिवार के किसी अन्य सदस्य के। उसके प्रश्न को दबाने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। घर का सकारात्मक वातावरण उसके आत्मविश्वास को मजबूत करता है।
1: बिल्कुल। हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि विद्यालय बेटी के व्यक्तिगत निर्माण का महत्वपूर्ण शिक्षक है। शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व, अनुशासन और रचनात्मक सोच विकसित करनी है। और हम देखते हैं कि सारे शिक्षक ये सब चीजें करते भी हैं।
0: बिल्कुल।
1: विशेष रूप से उन बेटियों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है जो आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाती है। एक शिक्षक का छोटा सा प्रोत्साहन भी किसी बेटी के जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही बहन बेटी के बारे में बात करें तो शिक्षा केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, समाज को भी ऐसे वातावरण बनाने होंगे जहां हर बेटी सुरक्षित होकर स्कूल जा सके और अपनी शिक्षा पूरी कर सके। समुदाय, पंचायत, विद्यालय, स्वयंसेवी संस्था और जागरूक नागरिक मिलकर बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा में सहयोग करना समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि शिक्षित और कुशल महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जब बेटियां शिक्षा प्राप्त करके रोजगार, व्यवसाय या उद्यमिता से जुड़ती हैं तो उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ती है। इससे श्रोता साथियों, केवल उनका व्यक्तिगत जीवन बेहतर नहीं होता बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज की उत्पादक क्षमता भी मजबूत होती है। इसलिए बेटियों की शिक्षा सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास का भी आधार है। हम देखते हैं कि कई बार प्रतिभा होते हुए भी अवसरों की कमी के कारण बेटियां पीछे रह जाती हैं। शिक्षा उन्हें अपनी क्षमता पहचानने का अवसर देती है। जब वह अपने ज्ञान और कौशल पर भरोसा करना सीखती है श्रोता साथियों, तो उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास से भरी बेटी अपने सपनों को लक्ष्य में बदल सकती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकती है।
1: बिल्कुल। तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, बहन बेटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले समाज की सोच बदलनी होगी। हमें ये मानना होगा अंजलि कि बेटी किसी से कम नहीं है। उसके शिक्षा पर किया गया खर्च परिवार पर बोझ नहीं बल्कि भविष्य के लिए मजबूत आधार है। हमें बेटियों से ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें इतना पढ़कर क्या करना है, बल्कि श्रोताओं, हमें ये पूछना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहती हो और हम तुम्हारे सपने पूरा करने में तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यही सोच वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत करेगी, क्योंकि बेटी की शिक्षा वास्तव में समाज के भविष्य की शिक्षा है। एक बेटी को पढ़ाने से उसके जीवन में अवसर बढ़ते हैं, परिवार जागरूक होता है और आने वाली पीढ़ी मजबूत होती है, साथ ही समाज भी विकास की ओर बढ़ता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हमें यह भी समझना होगा कि शिक्षा किसी एक वर्ग, लिंग या परिवार का अधिकार नहीं, बल्कि हर बच्चे का मूल आधार है।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चों को समान अवसर मिलेंगे तभी समाज की आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ पाएगी। श्रोता साथियों, बेटी की शिक्षा को केवल एक अभियान न बनाकर सामाजिक संकल्प बनाएं। हर बेटी के हाथ में किताब हो, उसकी आंखों में सपने हो और उसके कदमों के सामने अवसरों की खुली राह हो, क्योंकि एक बेटी को पढ़ाना एक परिवार को जगाना है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार को जगाना एक पीढ़ी को संवारना है और एक पीढ़ी को संवारना पूरे समाज के भविष्य को मजबूत बनाना है।
1: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाघधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके,
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है नमक, चीनी और तेल जीवन में संतुलन क्यों जरूरी है को लेकर। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम जानेंगे ढेर सारी बातों को कि किस तरीके से नमक और चीनी का संतुलन हमें बनाकर रखना चाहिए। श्रोता साथियों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें बात करने वाली क्या खास बात है। नमक तो खाने में स्वाद बढ़ाता है और चीनी मिठास देती है और तेल जो है वो सब्जी और दाल को पकाने में काम आता है।
0: बिल्कुल,
1: फिर इसमें संतुलन की बात क्यों? तो जरा अपने आप से 3 सवाल पूछिए कि क्या स्वाद बढ़ाने के लिए हम खाने में जरूरत से ज्यादा नमक तो नहीं डाल रहे? क्या चाय या शरबत या मिठाई के जरिए हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा चीनी तो नहीं जा रही? और क्या खाना बनाते समय तेल की मात्रा का हमें सच में अंदाजा रहता है? अगर इन सवालों का जवाब सोचने पर आपको भी थोड़ा सा रुकना पड़े तो आज कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में हम जानेंगे बहुत सी ढेर सारी बातों को। तो आप अवश्य बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: जिसमें अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, दही, मसाले, नमक, चीनी और तेल शामिल होते हैं। इन सभी चीजों के श्रोता साथियों अपनी अपनी उपयोगिता होती है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन किसी भी चीज की आवश्यकता से अधिक सेवन करने से अंजलि जी हम देखते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: नमक, चीनी और तेल हमारे भोजन के तीन ऐसे घटक है साथियों जिनका उपयोग लगभग हर घर में होता है। नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है, चीनी मिठास देती है और तेल भोजन बनाने में तथा शरीर को ऊर्जा देने में सहायता करता है।
1: बिल्कुल मनीषा, सबसे पहले एक बात समझना हमारे लिए जरूरी है कि नमक, चीनी और तेल को पूरी तरह दुश्मन मानना सही नहीं है। हमारे शरीर को कुछ मात्रा में वसा यानी कि फैट की जरूरत होती है। नमक में मौजूद सोडियम शरीर के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाता है, वहीं चीनी और अन्य कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं। समस्या श्रोता साथियों तब शुरू होती है जब इन चीजों की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। हमारे भोजन में अक्सर समस्या किसी एक दिन ज्यादा खाने से नहीं बल्कि रोज रोज थोड़ी थोड़ी अतिरिक्त मात्रा लेने की आदत से पैदा होती है।
0: बिल्कुल,
1: एक चम्मच अतिरिक्त नमक जो है वो आज शायद बड़ी बात न लगे, लेकिन अगर यही आदत लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर पर इसका असर पड़ सकता है। इसी तरह चाय में 2 चम्मच चीनी, दिन में कई बार मीठी चाय, बिस्किट, मिठाई, मीठे पेय और पैकेज वाले खाद्य पदार्थ, इन सबको जोड़कर देखें तो कुल चीनी काफी बढ़ सकती है। तेल के साथ भी यही बात है, सब्जी में थोड़ा तेल जरूरी हो सकता है लेकिन अगर तलने भूनने की आदत ज्यादा हो जाए तो भोजन की कुल ऊर्जा और वसा भी बहुत बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि नमक है वो हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नमक में श्रोता साथियों मुख्य रूप से सोडियम पाया जाता है जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने, तंत्रिका तंत्र को सामान्य कामकाज और मांसपेशियों के कार्यों में सोडियम की भूमिका होती है। हम देखते हैं कि हमारे भोजन में नमक बिल्कुल न हो तो श्रोता साथियों भोजन फीका लगने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिक नमक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शरीर को नमक की थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन में इसका उपयोग संतुलित मात्रा में किया जाता है। आजकल श्रोता साथियों बहुत से लोग ऊपर से अतिरिक्त नमक डालकर खाने की आदत को अपना रहे हैं। इसके अलावा अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स और नूडल्स, ऐसे कई पैकेज खाद्य पदार्थ हैं अंजलि जी, उसमें हम देखते हैं कि सोडियम है वो ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए श्रोता साथियों केवल खाने में डाला गया नमक ही नहीं बल्कि पूरे दिन में खाए गए सभी खाद्य पदार्थों से मिलने वाले नमक पर भी हमें ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, नमक स्वाद के लिए है, स्वाद का आधार नहीं। अगर भोजन में प्राकृतिक स्वाद, मसाले, हरी सब्जियां, नींबू, धनिया, जीरा, लहसुन और अन्य मसालों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए तो नमक की मात्रा धीरे धीरे कम की जा सकती है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, खाना पकाते समय नमक को नाप कर डालें। खाने के ऊपर से बार बार नमक डालने की आदत कम करें। इसी के साथ श्रोता साथियों नमकीन और पैकेट वाले स्नैक्स कम लें। अचार पापड़ का सेवन सीमित मात्रा में करें। बच्चों को बहुत ज्यादा नमकीन स्वाद का आदी न बनाएं। भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू और मसाले का इस्तेमाल करें। श्रोता साथियों ये सारी जो चीजें हैं वो हमें नमक के संतुलन को बनाने में मदद करती है।
0: हाँ।
1: आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि चीनी का संतुलन और तेल का संतुलन हमें कैसे बनाकर रखना है, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने नमक के बारे में जाना कि नमक का संतुलन हमें कैसे रखना है। यही बात करें चीनी की तो श्रोता साथियों, मिठास किसे पसंद नहीं होती है। चाय में चीनी, त्योहार की मिठाई, गर्मी में शरबत, कभी हलवा तो कभी बिस्किट। लेकिन हमें यह समझना होगा कि चीनी केवल चीनी के डिब्बे से नहीं आती, बाजार में मिलने वाले कई खाद्य और पेय पदार्थ में भी अतिरिक्त यानी कि फ्री शुगर हो सकती है। मिठाइयाँ, मीठे बिस्किट, केक, पेस्ट्री, मीठे पेय, पैकेज जूस, शरबत, इसी के साथ मीठी चाय और कॉफी और कई तरीके के पैकेज्ड खाद्य पदार्थ। श्रोता साथियों, WHO मुक्त शर्करा को कुल दैनिक ऊर्जा के 10% से कम रखने की सलाह देता है। 5% से कम करने का अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि घर में मीठा बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि जरूरत है मात्रा और आदत पर ध्यान देने की। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मनीषा दिन में 4 से 5 बार चाय पीता है और हर कप में ज्यादा चीनी डालता है, तो केवल चाय से ही काफी अतिरिक्त चीनी शरीर में पहुंच सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मैंने आज मिठाई खाई है या नहीं, सवाल यह है कि आज पूरे दिन में कुल कितनी अतिरिक्त चीनी मेरे भोजन का हिस्सा बनी है। फल खाइए, क्योंकि पूरे फल जो है उसमें फाइबर होता है। मीठे पेय की जगह सादा पानी या बिना चीनी वाला पेय चुनने की आदत डालिए। चाय में चीनी धीरे धीरे कम कीजिए। बच्चों को हर छोटी खुशी पर टॉफी, चॉकलेट देने की आदत कम कीजिए। और सबसे जरूरी बात, गुड़ और शहद को भी असीमित मात्रा में खाना सही नहीं है, वे भी शर्करा के ही स्रोत हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें तेल के महत्व की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि तेल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वसा शरीर को ऊर्जा देती है और कुछ आवश्यक फैटी एसिड साथ ही वसा में घुलने वाले विटामिनों के उपयोग में सहायता करती है। इसलिए श्रोता साथियों, भोजन में वसा की कुछ मात्रा आवश्यक होती है। हम देखते हैं कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अन्य खाद्य तेलों का उपयोग भारतीय घरों में लंबे समय तक किया जा रहा है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अलग अलग तेलों की पोषण संरचना है वो अलग अलग होती है, इसलिए तेल का चुनाव करते समय गुणवत्ता और मात्रा दोनों का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि यह धारणा सही नहीं है कि स्वस्थ रहने के लिए तेल को पूरी तरह से बंद कर देना, बल्कि उद्देश्य यह होना चाहिए साथियों कि तेल का उपयोग ही वो हम जरूरत के अनुसार करें और सही मात्रा में करें।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि स्वस्थ भोजन का मतलब केवल नमक कम, चीनी कम, तेल कम कहना नहीं है। स्वस्थ भोजन का मतलब है पूरी थाली को संतुलित बनाना। हमारी थाली में हरी और दूसरी सब्जियां शामिल हो, मौसमी सब्जियां हो, फल, अनाज और मोटे अनाज हो, दाल, चना, मूंग, राजमा जैसे प्रोटीन स्रोत हो, दूध और अन्य उपयुक्त खाद्य पदार्थ हो, जरूरत के अनुसार मेवे और बीज भी हो। श्रोता साथियों, जैसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, जब हम भोजन में विविधता को जोड़ते हैं तो शरीर को अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए केवल यह सोचने की बजाय कि नमक कितना कम किया, हमें यह भी सोचना चाहिए कि आज मेरी थाली में सब्जी कितनी थी, फल खाया या नहीं, दाल या अन्य प्रोटीन स्रोत लिए या नहीं। यही सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे, नमक, चीनी और तेल हमारे भोजन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसमें से श्रोता साथियों, किसी को भी बिना आवश्यकता के पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इसका उपयोग संतुलित मात्रा में करना हमारे लिए आवश्यक है। नमक शरीर के लिए आवश्यक सोडियम प्रदान करता है, चीनी ऊर्जा के स्रोत वाले कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा होती है और तेल वसा तथा ऊर्जा प्रदान करता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, इनका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य का मंत्र केवल खाना नहीं है, बल्कि सही मात्रा में सही भोजन करना है।
0: बिल्कुल।
1: भोजन में नमक कम हो, अतिरिक्त चीनी हो और तेल का उपयोग जरूरत के अनुसार हो। इसके साथ ही श्रोता साथियों, भोजन में दालें, अनाज, सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक पदार्थ हैं, वो भी हमें शामिल करने हैं।
0: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप आज से एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं कि एक सप्ताह का स्वाद संतुलित अभियान चलाएं। पहले दिन घर में इस्तेमाल होने वाले नमक, चीनी, तेल की मात्रा पर ध्यान दें। दूसरे दिन चाय में चीनी थोड़ी कम करें। तीसरे दिन किसी एक तले हुए नाश्ते की जगह घर का हल्का विकल्प बनाएं। चौथे दिन पैकेट वाला नमकीन कम करें। पांचवें दिन सब्जी में तेल नाप कर ढालें। छठे दिन पूरे परिवार की थाली देखें और उसमें फल या सब्जी की मात्रा बढ़ाएं। और सातवें दिन परिवार बैठकर चर्चा करें कि क्या हमें स्वाद में कोई कमी महसूस हुई, क्या हम थोड़ा नमक कम चीनी कम तेल वाले भोजन के आदि हो सकते हैं? यदि छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर बड़ी आदत बनते हैं तो श्रोता साथियों इन्हें हमें हमारे जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि आज की हमारी बातचीत से यह सीख मिलती है हमें कि स्वस्थ जीवन किसी एक महंगे खाद्य पदार्थ से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी सही आदतों से बनता है। नमक हमारे भोजन को स्वाद देता है, चीनी मिठास देती है और तेल भोजन का हिस्सा है, लेकिन जब इनकी मात्रा जरूरत से आगे बढ़ती है तो यही चीजें हमारे भोजन के संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसलिए आज घर लौटकर अपनी रसोई पर एक नजर जरूर रखिए। नमक की डिब्बे से पूछिए कि क्या मुझे सच में इतना नमक चाहिए। चीनी के डब्बे से पूछिए क्या हर कप चाय में इतनी मिठास चाहिए। और तेल की बोतल से पूछिए कि क्या तुम्हें नापकर इस्तेमाल करता हूँ। अगर इन तीनों सवालों के जवाब में हम थोड़ा सा बदलाव कर पाए तो हमारी थाली भी बेहतर होगी और हमारी खाने की आदतें भी। याद रखिए श्रोता साथियों, थाली में विविधता होनी चाहिए, मात्रा में संतुलन होना चाहिए और यही हमारे स्वस्थ जीवन का सुंदर अनुशासन है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज की कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया हैं, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है, ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
3: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है, ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज हमारी कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि हमें अपने हुनर को पहचानना है क्योंकि हर व्यक्ति में एक खास क्षमता होती है। श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हमें लगता है कि वो व्यक्ति सारी चीजों में एक्सपर्ट है, मैं क्यों नहीं। लेकिन हम हमारे अंदर की चीजों को जब तक नहीं खोजेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि हमारे अंदर क्या हुनर है, हम किस कौशल में आगे बढ़ सकते हैं, तब तक हम हमारे जीवन को बदल नहीं सकते। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर किसी भी चीज को लेकर हुनर ना हो। किसी के अंदर पेंटिंग का हुनर होता है तो किसी की राइटिंग अच्छी होती है तो वो हैंड राइटिंग में बहुत अच्छा होता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को गीत गाना अच्छा लगता है, तो कोई खाना बनाने में अच्छा होता है, तो कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है। इस तरीके से हर किसी में अलग अलग तरीके से किसी भी प्रकार का हुनर हो सकता है। बस जरूरत ये है कि हम उस हुनर को कैसे पहचाने और उसमें आगे कैसे बढ़े।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अपने हुनर को पहचानिए, क्योंकि श्रोता साथियों हर इंसान की कोई ना कोई खासियत होती है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि दुनिया में हर इंसान अपने आप में खास होता है। कोई व्यक्ति खेल में, कोई संगीत में, कोई चित्रकारी में, तो कोई श्रोता साथियों बातचीत करने में, कोई लोग कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने में कई बार अपनी खूबियों को पहचान नहीं पाते हैं श्रोता साथियों हम, और दूसरों की सफलता देखकर हम स्वयं को कम समझने लगते हैं। हम देखते हैं अंजलि जी कि सामने वाला ज्यादा प्रतिभाशाली है ये हम सोचने लगते हैं, जिससे श्रोता साथियों हम अपनी क्षमताओं को भूलने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाता है। जिसे साथियों कहना चाहेंगे कि आप भी अपनी खासियत को पहचानें और उसे और निखारने की कोशिश करें, क्योंकि श्रोता साथियों इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान की कोई न कोई ऐसी खासियत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मैं भी किसी काम में बहुत अच्छा हो सकता हूँ, क्या मेरे अंदर भी कोई ऐसी खासियत है जो दूसरों से अलग है, क्या जरूरी है कि सफलता पाने के लिए हर किसी को पढ़ाई ही सबसे अच्छा स्रोत होता है
0: जी?
1: और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमने कभी अपने अंदर छिपे हुनर को पहचानने की कोशिश की है? साथियों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी को पढ़ने में रुचि होती है तो कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई चीजों को समझने में माहिर होता है तो किसी के हाथों में कला होती है, कोई खेती में बहुत अच्छा होता है तो कोई पशुओं की देखभाल में कुशल होता है, तो कोई मुश्किल समय में सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यानी कि दोस्तों, हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई खास क्षमता जरूर होती है, जरूरत उसे पहचानने की और निखारने की है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचानना है। जब व्यक्ति अपने हुनर को पहचान लेता है साथियों, तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और वो अपने जीवन में बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाता है। यही अगर अंजलि जी बात करें हुनर क्या है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हुनर का अर्थ किसी काम को अच्छी तरह से करने की विशेष क्षमता है। यह क्षमता जन्मजात हो सकती है और अभ्यास से भी श्रोता साथियों इसे विकसित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को बचपन से ही संगीत में रुचि हो सकती है, जबकि श्रोता साथियों कई लोग होते हैं जो बचपन से उनके पास ऐसी क्षमताएं नहीं होती हैं, पर फिर भी वह अभ्यास करके इसमें अच्छे वक्ता बन सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि अक्सर हम हुनर का मतलब केवल विशेष कला से लगाते हैं। हमें लगता है कि जो अच्छा गाता है, नाचता है, चित्र बनाता है या कंप्यूटर चलाता है उसी के अंदर हुनर है, लेकिन हुनर इससे कहीं बड़ा है। हुनर वह क्षमता है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी काम को रुचि, समझ, अभ्यास के साथ बेहतर तरीके से कर पाता है।
0: जी हाँ।
1: किसी महिला का स्वादिष्ट खाना बनाना भी हुनर है, किसी किसान का मौसम देखकर खेती की तैयारी करना भी हुनर है, किसी कारीगर का लकड़ी, मिट्टी, बांस से सुंदर वस्तु बनाना भी हुनर है, किसी बच्चे का नई चीजें जल्दी सीखना भी हुनर है, किसी युवा का लोगों से अधिक तरह बात करना भी हुनर होता है, किसी व्यक्ति का दूसरों की समस्या समाधान से सुनना और समाधान सुझाना भी एक क्षमता है। इसलिए हमें अपने हुनर को केवल नौकरी या कमाई से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हुनर हमारे व्यक्तित्व की वह ताकत है जो हमें अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कहीं लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कोई खास प्रतिभा नहीं है, लेकिन श्रोता साथियों ऐसा बहुत कम ही होता है। अक्सर समस्या यह होती है कि हमें अपने हुनर को पहचानने का अवसर ही नहीं मिलता। एक बच्चे की पढ़ाई में समस्या हो सकती है साथियों, लेकिन अगर वह बहुत अच्छा चित्र बना सकता है, कोई गणित के सवाल सोल्व कर

0: सकता है या कुछ और काम कर सकता है, तो उसके अंदर वो सब करने का हुनर होता है। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि अगर हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, लोगों को देख के परेशान होते हैं कि इसके अंदर तो ये है, ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, तो श्रोता साथियों, ये बात होती है वो हमारे लिए बहुत गलत होती है। इससे अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे अंदर की जो क्षमता होती है और जो कार्य करने की क्षमता होती है साथियों, वो भी पीछे छूटने लगती है और हमारा आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जिससे साथियों, हम देखते हैं कि जो काम हमें अच्छे से आता है, जो हमारा हुनर है, उसे भी हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है, अपने अंदर की जो भी खूबी है उसे निखारने का प्रयास करना है। हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, कोई चित्र बनाने में अच्छा होता है, कोई अन्य कार्य है उनमें अच्छे होते हैं। तो श्रोता साथियों, दूसरों की तुलना हमें नहीं करनी है अब खुद से, क्योंकि साथियों, हर इंसान की खासियत और हर इंसान होता है उसके अंदर हुनर अलग अलग होता है। इसीलिए खुद के साथ अपना कंपैरिजन करना बहुत गलत होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आगे भी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो इसी तरह बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि हमारे वागड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ हुनर की कोई कमी नहीं है। हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बड़ी डिग्री की खेती के बारे में बहुत गहरी समझ रखते हैं। उन्हें पता होता है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर होगी, बारिश कब होने की संभावना है, पशुओं की देखभाल कैसे करनी है और पारंपरिक तरीके से खेती को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ महिलाएं घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी संभालती हैं। वे पारंपरिक व्यंजन बनाना जानती हैं, अनाज को सुरक्षित रखना जानती हैं, बीजों को संभालने की परंपरागत जानकारी रखती हैं और कई तरह के हस्तशिल्प में कुशल होती हैं। हमारे युवा मोबाइल चलाना जानते हैं, वीडियो बना सकते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन जानकारी खोज सकते हैं और नई तरीके को जल्दी से सीख सकते हैं। बस जरूरत है मनीषा की इन क्षमताओं को हम पहचाने और सही दिशा में इन्हें आगे बढ़ाएं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे समाज में हम सफलता है उसकी बात करें तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे समाज के लोग हैं वो सफलताओं को अच्छे अंक, अच्छी नौकरी या अधिक कमाई से जोड़ देते हैं। इसके कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं और हमारे समाज के जो युवा हैं उनके अंदर जो खास क्षमता होती है वे उन्हें भूलने लगते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, अपने माता पिता और जो घर के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर और हमारे युवा साथी हैं वो क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर क्या खास ऐसी बात है जो करके वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका भी ध्यान है वो माता पिता को रखना चाहिए। अक्सर अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारे घर में जो माता पिता होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा चित्र बना रहा है या कुछ छोटा मोटा काम कर रहा है तो वो सोचते हैं कि इससे तो क्या ही हो जाएगा, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते ना ऐसा कुछ। श्रोता साथियों, इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर जो हुनर होता है वो उसमें पीछे हो जाता है और जो हम दबाव डाल के उसे करवाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर नहीं कर पाता है। इसीलिए साथियों, बच्चा जो चाहता है, हमारे युवा साथी जो चाहते हैं, उन्हें वो करने दो और उन्हें आगे बढ़ने दो।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि अपने हुनर को पहचानने में सबसे बड़ी रुकावट कई बार तुलना बन जाती है। हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। देखो वह बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, वह कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, वह कंप्यूटर चला लेता है, तुम क्यों नहीं। ऐसी बातें कई बार बच्चे के मन में यह भावना पैदा कर देती है कि वह दूसरों से कम है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। जरूरत नहीं कि जो बच्चा गणित में कमजोर हो वह जीवन में भी कमजोर हो सकता है। वह चित्र बनाने में बहुत अच्छा हो सकता है, उसे खेल में रुचि हो सकती है, हो सकता है कि वह लोगों से बहुत अच्छे से बात करता हो सकता है कि उसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। इसी तरह श्रोता साथियों, कोई युवा पढ़ाई में सामान्य हो सकता है लेकिन उसके अंदर व्यवसाय शुरू करने की शानदार क्षमता हो सकती है। इसलिए हमें अपने बच्चों और युवाओं से यह नहीं पूछना चाहिए कि तुम दूसरे जैसा क्यों नहीं कर रहे हो, बल्कि ये पूछना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कौन सा काम करने में तुम्हें खुशी मिलती है, किस काम को करते हुए तुम्हें समय का पता नहीं चलता। इन सवालों के जवाब में मनीषा उनके हुनर का जो चीज है, उनका जो राज है, वो छुपा हो सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें अपने हुनर को पहचानना क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि अपने हुनर को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने जीवन की दिशा को समझने में मदद मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति है वो अपनी क्षमताओं को पहचानता है तो उसे उस क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ती है और अपने रुचि को पहचानने की योग्यता भी मिलती है और साथ ही उसका आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति को लगता है कि वह कुछ कर सकता है, यही विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी ताकत देता है। यदि श्रोता साथियों व्यक्ति अपने हुनर को नहीं पहचाने तो वह दूसरों की नकल करने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: वह कई काम करने लगता है और उसके आसपास जो लोग करते हैं वही करने लगता है, जिसे अंजलि जी हम देखते हैं कि वो उस काम में आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं का वहीं अटका रह जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, अपने खुद के अंदर का क्या हुनर है, आपको क्या पसंद है, किस काम को आप कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है और थकान महसूस नहीं हो रही है, तो वही श्रोता साथियों आपका असली हुनर है, पहचानिए और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि अपने अंदर छिपी क्षमता पहचानने के लिए खुद से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना पसंद है? ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको खुशी मिलती है? क्या आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है? क्या आपको चीजें बनाना अच्छा लगता है? क्या आपको खेत में काम करना अच्छा लगता है? क्या आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है? क्या आपको खाना बनाना, सिलाई, चित्रकारी, संगीत या खेल पसंद है? श्रोता साथियों, आपकी पसंद आपके हुनर की पहली सीढ़ी हो सकती है।
1: जी हाँ।
0: दूसरा सवाल है कि मैं किस काम को जल्दी सीख लेता हूँ? श्रोता साथियों, हर व्यक्ति की सीखने की गति अलग होती है। किसी को मशीन समझने में आसानी होती है, किसी को मोबाइल और तकनीक समझने में, तो किसी को हाथ से काम करने में। जिस काम को आप दूसरों की तुलना से जल्दी समझ लेते हैं श्रोता साथियों, वो आपकी क्षमता का संकेत हो सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि श्रोता साथियों हमारी अंजलि जी ने आपको बताया कि जो सवाल है उनका जवाब आपने आपको खोजना है, और जो सवाल है श्रोता साथियों उनका जवाब आपको मिल जाता है तो वही आपका असली हुनर है। श्रोता साथियों, जिस काम को करने के लिए व्यक्ति में बार बार बार बार प्रेरणा मिलती है और जिसे करते समय उसे समय का पता नहीं चलता है और उसमें स्वाभाविक रुचि आ जाती है श्रोता साथियों, तो वही हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर है वो असली हुनर है। तो श्रोता साथियों, अपने हुनर को पहचानिए और उस पर काम कीजिए और उसमें और बेहतर बनने का प्रयास कीजिए।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि कई बार हमें अपने हुनर का पता खुद नहीं चलता, लेकिन हमारे आसपास के लोग उसे पहचान लेते हैं। कोई कह सकता है कि तुम बहुत अच्छा समझते हो, तो कोई कह सकता है कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा है, कोई कह सकता है कि तुम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो। इन बातों को ध्यान से सुनिए, हो सकता है लोग आपके अंदर वह गुण देख रहे हो जिसे आपने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया हो। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण हुनर है जो हमें पहचानने की जरूरत है। अगर हम इन हुनर को पहचान लेते हैं तो हम हमारे जीवन में आने वाली कई चुनौतियों का सामना बहुत अच्छे से कर पाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे अपने हुनर को पहचानिए, क्योंकि श्रोता साथियों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी ढेर सारी आपसे बातें रही थी। हमने जाना था कि इसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, और हमारे जीवन में जो सहयोगी लोग होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। यहीं अगर अंजलि जी बात करें तकनीकी और आधुनिक युग में हुनर की, तो श्रोता साथियों, देखते हैं कि आज का युग तकनीकी और तेजी से बदलती दुनिया का युग है। इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों ने लोगों के हुनर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। कोई व्यक्ति घर बैठकर अपनी कला, लेखन, संगीत, शिक्षा, डिजाइनर या जो आपके कौशल है, उन लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन श्रोता साथियों, तकनीकी के साथ चुनौतियां हैं वो भी बढ़ती जा रही है। इंटरनेट पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर स्वयं को हम कम समझने लगते हैं। इसीलिए साथियों, डिजिटल युग का प्रयोग प्रेरणा और सीखने के लिए करना चाहिए, न कि अपनी तुलना दूसरों से करने के लिए।
1: बिल्कुल मनीषा।
0: साथियों, हम देखते हैं कि आज रोजगार की दुनिया में केवल डिग्री ही पर्याप्त नहीं मानी जाती। व्यवहारिक कौशल, रचनात्मक सोच क्षमता और सामान्य जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान और टीम वर्क के साथ मिलकर हम कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अपने कौशलों का भी विकास करना चाहिए। अगर अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बार पढ़ाई करके या कॉलेज करके हम डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, पर हमारे अंदर का हुनर है और हमारे पास क्या कौशल है उन पर हम काम नहीं कर पाते, जिससे कि श्रोता साथी, हम देखते हैं कि आगे चलकर हमारे पास जो डिग्रियां होती है वो भी हमारे लिए कुछ खास काम की नहीं आती। इसलिए श्रोता साथियों, अपने व्यवहारिक कौशल और टीम वर्क के साथ लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, उस पर भी हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है।
1: बिल्कुल मनीषा, हुनर को अभ्यास की जरूरत होती है। मान लीजिए दोस्तों कि किसी बच्चे को चित्र बनाना पसंद है, अगर वह नियमित रूप से चित्र बनाए, नए तरीके सीखेगा और अपनी गलतियों को सुधारेगा तो उसका हुनर धीरे धीरे मजबूत होगा। अगर किसी युवा को मोबाइल से वीडियो बनाना आता है तो वीडियो से एक्टिंग सीख सकता है। अगर किसी महिला को सिलाई आती है तो वह नई डिजाइन सीख कर अपने काम को आगे बढ़ा सकती है। अगर किसी किसान को खेती की अच्छी समझ है तो वह नई कृषि तकनीक सीख कर अपनी जानकारी को बढ़ा सकता है। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों की रुचि से शुरुआत होती है, अभ्यास से हुनर मजबूत होता है, और यही अवसर है जब हम हमारे हुनर को पहचान बना सकते हैं। आपने हुनर को पहचानने और आगे बढ़ाने के रास्ते में असफलताएं भी बहुत सारी देखी होंगी। कई बार मनीषा, हम कोई नया काम शुरू करते हैं और पहली बार में सफलता नहीं मिलती तब हम सोच लेते हैं कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी जो सोच होती है वो सही नहीं होती है। पहली कोशिश में गलती होना यह साबित नहीं करता कि आप में जो क्षमता है कार्य करने की वो नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आपको अभी और सीखने की है। एक किसान पहली बार किसी नई फसल का प्रयोग करता है और परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं है कि वह खेती नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: वह अगली बार अपनी गलती समझकर बेहतर तैयारी कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसी तरह युवा कोई नया कौशल सीखता है और शुरुआत में कठिनाई आती है तो उसे रुकना नहीं चाहिए। गलती से सीखना है, अभ्यास करते रहना है और खुद पर भरोसा रखना है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें कि अपने हुनर को पहचानने की कुछ व्यवहारिक उपाय हैं जिन्हें हम अपनाकर अपने हुनर को कैसे पहचान सकते हैं, तो साथियों, सबसे पहला तो है व्यक्ति को अलग अलग गतिविधियों को आजमाना है। साथियों, हम देखते हैं कि अगर हम अलग अलग काम करते हैं या कुछ चीजें हैं जो सीखने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी रुचि किस में है और हम क्या करना चाहते हैं। इससे भी हम अपने अंदर के हुनर को पहचान सकते हैं। दूसरा है श्रोता साथियों, अपने अनुभवों पर ध्यान देना। जिस काम में हमें बार बार सफलता मिलती है या उसे करने के लिए स्वाभाविक रूप से हम सहज महसूस करते हैं, वही हमारी क्षमता का संकेत हो सकता है। तीसरा है श्रोता साथियों, दूसरों की सकारात्मक प्रक्रिया है वो हमें सुननी चाहिए। परिवार, शिक्षक, मित्र और हमारे कुछ विशेष जो हमारे साथ लोग होते हैं वो उस काम को लेकर कैसे आकर्षित होते हैं और हमारी तारीफ करते हैं या उस प्रक्रियाओं को लेकर हमारी जो हमें प्रेरणा देते हैं उससे भी हमें सीखने की कोशिश करनी है। अगर श्रोता साथी, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जब हमारा हुनर सामने आता है तो लोग हैं वो हमारी तारीफ करने लग जाते हैं। जो होता है श्रोता साथियों, नियमित अभ्यास करना चाहिए। अंजलि जी, हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में थोड़े से समय के लिए अभ्यास करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर श्रोता साथियों, अगर हमारे अंदर हुनर है और हम किसी काम को कर रहे हैं अगर उसके अंदर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वो हमारा हुनर है वो भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए श्रोता साथियों, अभ्यास से ही हम अपने हुनर को पहचान सकते हैं। पांचवा है श्रोता साथियों, अपनी प्रगति है उन्हें हमें लिखना है। यदि हम प्रतिदिन या प्रत्येक सप्ताह यह देखें कि हमने क्या सीखा है, कहां सुधार किया है और अपनी क्षमताओं को हमने कैसे निखारा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा हुनर क्या है और उससे सीखने के लिए हमारी रुचि कितनी है। इन सब से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, छठा है, अपनी असफलताओं से सीखने का प्रयास करें। किसी क्षेत्र में श्रोता साथियों असफल होने पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। अक्सर अंजलि जी हम देखते हैं कि सफलता पाने के लिए असफलताओं का सामना हमें करना पड़ता है। जीवन में साथियों कोई भी ऐसा काम नहीं है या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में असफलताओं का सामना नहीं किया हो। साथियों, बस हमें ध्यान रखना है कि असफलताएं हमें गिराने नहीं आती, असफलताएं हमें अनुभव देने आती है, हमें सिखाने के लिए आती है और हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए श्रोता साथियों, असफलताओं से हमें घबराना नहीं है और असफलताओं से सीखने की कोशिश करनी है।
1: जी हाँ मनीषा, बच्चों और युवाओं के हुनर को पहचानने में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। माता पिता को केवल बच्चों के नंबर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे का व्यवहार, रुचि, कल्पना शक्ति, सवाल पूछने की आदत, दूसरों की मदद करने की इच्छा और किसी काम के प्रति लगाव भी देखना चाहिए। अगर बच्चा खेती में रुचि रखता है तो उसे यह कहकर छोटा महसूस न कराएं कि इसमें क्या रखा है। अगर बेटी सिलाई या हस्तकला में रुचि रखती है तो उसे प्रोत्साहित करें। अगर बेटा खेलना पसंद करता है तो उसे केवल यह कहकर न रोकें कि खेलने में क्या होगा। हर रुचि को सही दिशा और संतुलित अवसर देने की जरूरत होती है। परिवार का एक छोटा सा प्रोत्साहन किसी बच्चे के आत्मविश्वास को बहुत बड़ा बना सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें कुछ महान व्यक्ति हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, तो साथियों हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर और उसमें मेहनत कर महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वैज्ञानिक हैं श्रोता साथियों, उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को खोजों में बदला है। कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं से कला में बदला है। खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक क्षमता से अनुशासन के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को हासिल किया है। साथ ही श्रोता साथियों, लेखकों ने अपने विचारों से साहित्य में बदला है। इन्हीं लोगों के जीवन में यह शिक्षा मिलती है श्रोता साथियों कि सफलता अचानक नहीं आती, उनके पीछे अपनी क्षमताओं को पहचानना, लक्ष्य निर्धारित करना, निरंतर प्रयास करना और असफलताओं से सीखने का प्रयास करना है। हर व्यक्ति महान व्यक्तियों जैसा प्रसिद्ध तो नहीं बन सकता है साथियों, लेकिन हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास अवश्य कर सकता है। सफलता का अर्थ श्रोता साथियों केवल प्रसिद्ध होना नहीं है। यदि व्यक्ति अपने हुनर का अंजलि जी सही उपयोग करे, स्वयं को समाज के लिए बेहतर बनाने का प्रयास करे, तो हम देखते हैं कि वही उसकी वास्तविक सफलता है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। आगे भी बातें जो है वो निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर शुरू करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पाए, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में बेटियों के अंदर भी अनेक प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता।
1: बिल्कुल,
0: बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसे तकनीक सीखने में रुचि है तो मोबाइल और कंप्यूटर सीखने देना चाहिए। उसे खेल पसंद है तो खेल के समय सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उसे सिलाई कढ़ाई चित्रकला संगीत व्यवसाय में रुचि है तो उसे प्रशिक्षण और अवसर मिलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
0: हुनर लड़का या लड़की देखकर पैदा नहीं होता, हुनर अवसर मिलने पर सामने आता है। आज के समय में कौशल और हुनर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम अच्छी तरह आता है तो वह उस हुनर को रोजगार का साधन भी बना सकता है।
1: जी हाँ,
0: जैसे सिलाई का हुनर है तो सिलाई के अंदर कपड़ों का काम कर सकते हैं। खाना बनाने का हुनर है तो खाद्य सामग्री या छोटा व्यवसाय शुरू करें। हस्तशिल्प में हुनर है तो स्थानीय उत्पाद और बाजार में उनकी चीजों को बेचें। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग कौशल को अलग अलग तरीके से समझकर, अगर उसमें कम हमें थोड़ा सा नॉलेज है तो उसका अच्छा सा प्रशिक्षण लेकर गुणवत्तापूर्ण मेहनत करके हम उसमें सफल हो सकते हैं। श्रोता साथियों, आज से एक छोटा सा काम शुरू कीजिए कि कागज पर लिखिए और उसके ऊपर लिखिए कि मेरे अंदर क्या खास है। उसके नीचे 5 बातें लिखिए कि मुझे कौन सा काम करना पसंद है, मैं कौन सा काम अच्छी तरह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लोग मेरी किस बात की तारीफ करते हैं, मैं कौन सा नया हुनर सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस महीने क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ। हो सकता है शुरुआत में आपके पास केवल 2 जवाब हो तो कोई बात नहीं, समय के साथ आपकी सूची बढ़ती जाएगी और आप सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज युवाओं के सामने कई सारे अवसर हैं, अवसरों की कमी नहीं है। आवश्यकता श्रोता साथियों इस बात की है कि अपनी रुचि और क्षमता को पहचानने की और धैर्य के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ने की।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें केवल इस आधार पर करियर नहीं चुनना चाहिए साथियों कि समाज में कौन सा पेशा है वो अधिक लोकप्रिय है। करियर चुनते समय साथियों रुचि, क्षमता, अवसर और भविष्य की संभावनाओं का संतुलन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, हमारे युवा साथियों को यह समझना चाहिए कि सफलता कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता है। किसी को सफलता जल्दी मिल सकती है, किसी को देर से। इसलिए श्रोता साथियों, दूसरों की गति देखकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके लगातार आगे बढ़ते रहना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि अपने हुनर को पहचानिए, क्योंकि श्रोता साथियों हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। जीवन का अंतत प्रेरणादायक और उपयोगी संदेश यही है कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से प्रतिभाहीन नहीं होता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसी विशेषताएं अवश्य होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। फर्क श्रोता साथियों केवल इतना है कि कुछ लोग अपनी प्रतिभाओं को समय पर पहचान लेते हैं, जबकि कुछ लोग हैं वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना। अंत में श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि उसके लिए वो राय सुझाव हम पहुंचा सके पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को
1: नमस्कार। साथी श्रोता साथियों आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है साथियों, आपको लिखना है हमारे व्हाट्सएप पर SMS करना है, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। नंबर एक बार फिर से बताना चाहूँगी साथियों, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाव और फरमाइश के गीत हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइश का सिलसिला शुरू हो चुका है तो बढ़ते हैं साथियों हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। हमारी पहली फरमाइश आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी, रोहिदास चौक पंडरपुर शहर सिटी से। फिल्म का नाम है अजनबी। गीत के बोल है, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं पंडरपुर शहर सिटी से ही प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशाज सिंधे, ऋषिंदे, कृष्णा घोड़के जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं श्रोता साथी, जुड़ रहे हैं येतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा और भी हमारे श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। नाम बताना चाहूंगी दोस्तों आप सभी को, पाटीकला से भूमिका कुमार, नरेश चौहान जी, मनोज कुमार मीणा जी, मेघराज मीणा जी, सुरेश कुमार जी, विक्रम सिंह, लक्ष्मण चौधरी, चंद्रपाल राम प्रसाद जी। बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं महावीर देवीलाल जी, राजा राम मनसाराम जी और माया राम संदीप चौहान जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। तब तक आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, इसी गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है रायबरेली से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों रिफ्यूज। गीत के बोल हैं पंछी नदियां पवन के झोंके। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको बताना चाहूंगी जुड़ रहा है रायबरेली से मनोज कुमार मीणा जी, विक्रम सिंह जी, लक्ष्मण चौधरी, चंद्रपाल बिहारी जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो घाटोल से जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र चौरेश चौहान जी, जशवर्धन मीनारिया, सत्यम मीणा, शिवम, संजीव, कमलेश डाबे राव, रोहित शर्मा जी, वजेंद्र अरुण, गणेश लाल, जसवंत कुमार, संजय, अखिलेश जी, हेमराज मीणा, चरण सिंह और श्याम प्रसाद जी रायबरेली से जुड़ रहे हैं। इसी बीच और भी साथी हैं, कुशलगढ़ से जुड़ रहे हैं सतराम हरियालाल जी, हेमंत आकाश सरोदे जी, प्रिया सरोदे जी, देवेश विपिन शर्मा जी, हरिंद्र विकास दलपत्ते जी, तलवाड़ा से हैं श्यामलाल, रामलाल, पंकज, राहुल शर्मा, मेघराज मीणा जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पंछी नदियां पवन के झोंके। तब तक आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था पंछी नदियां पवन के झोंके, इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगले फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है घाटोल से। फिल्म का नाम है मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बॉर्डर। गीत के बोल हैं हमें जब से मोहब्बत हो गई है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी, श्रोता साथी जुड़ रहे हैं घाटोल से दलपत सिंह जी, विकास देव जी, हरेंद्र कुमार जी, विपिन शर्मा जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी जुड़ रहे हैं लदावली मुरादाबाद से अजित कासाना, माया देवी ऋतिक आदित्य कासाना जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। कॉपर गांव से हैं सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, शेवगांव जी, श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली जी। इसी बीच हमारे साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश को सुन रहे हैं। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं हमें जब से मोहब्बत हो गई है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

जैसा कि श्रोता साथियों, अभी हमने बॉर्डर फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, फरमाइश का, श्रोता साथियों के द्वारा भेजी गई थी ये फरमाइश, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। इसी गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है साथियों मैं प्रेम की दीवानी हूँ, गीत के बोल हैं बनी बनी। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे इस गीत के साथ में ददरेंगे बाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारिस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखलाल वर्मा जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं और भी जुड़ना चाह रहे हैं संजय कॉलोनी से, खंडवा से अब्दुल गफार डावर खुनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, अब्दुल रहमान डावर, उमर डावर, राजेंद्र कटारा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी जी। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डोली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर जी। साथ ही जुड़ रहे हैं और भी, आपको नाम बताना चाहूंगी, जुड़ रहे नेहरू चौक पैठन से सुदेश यादव, अनीता यादव, आरती, पूजा प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव, जलाना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता यादव। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं बनी रे में बनी बनी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और बनते रहिए और सुनते रहिएगा साथियों वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: यहाँ क्यों आ गए?
1: संजना से सच्चाई छुपाकर हमने ठीक नहीं किया सुशीला।
0: क्या मतलब?
1: देख नहीं सकती तू कि संजना प्रेम किशन को किस हद तक चाहने लगी?

साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज, गीत के बोल हैं सुना सुना लम्हा लम्हा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मधुबनी बिहार से, अरविंद कुमार जी, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, मेरठ से अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, साथ ही जुड़ रहे हैं। दानपुर से हंसराज, विकास, वीरेश चौहान, मिथिलेश, वीरेंद्र, देवेंद्र कटारा, राधेलाल, संदीप चौहान जी। घाटोल से सुंदरलाल, अवधेश, रामेश्वर, गणेशलाल, संदीप चौहान, राधेलाल जी, देवेंद्र कटारा जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं सुना सुना लम्हा लम्हा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। अगली फरमाइश श्रोता साथियों अकोला से आई है, फिल्म का नाम है मस्ती। गीत के बोल हैं, दिल दे दिया है जान तुझे देंगे। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, सुशीला।

देवी मंदिर कर, सदन मंदिर कर, कुमार गुरु मंदिर कर, यवतमाल से निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरावर पिताजी, और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, कौड़ा गांव छत्तीसगढ़ से सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान अनुष्का भवानी चक्रधारी जी साथी जुड़ रहे हैं, और भी श्रोता साथी। अनुरोध करता इसी गीत के हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी गोस्वामी, दिशा गोस्वामी जी, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, आसाम से जुड़ रहे हैं हितेंद्र दास जी, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुजन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है, दिल दे दिया है जान तुझे देंगे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत एक शीर्षक गीत है। ये फरमाइश आई है शिवाजी चौक से। फिल्म का नाम है दोस्तों प्यार गीत के बोल हैं तेरी दीवानी। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं अनिल तामरकर, अमर तामरकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रंजन रंजक लाहू, सोना मोना यानी हनी और यश जी। इसे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं नाम बताना चाहूँगी साथियों जुड़ रहे हैं। येतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गश्री जायसवाल, राखी जायसवाल जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरी दीवानी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है जाग उठा इंसान। गीत के बोल हैं, तरपत बीते तुम बिन ये रेना। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है भाई राम चंद्रवंशी, श्री कृष्णा चंद्रवंशी और काजल मीनाक्षी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी, ईशान चीपा। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से सुभाष गोद्रा, मिमला गोद्रा, इंदु पार्वती, हिमांशु जी गोद्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से विजय सिंह, कविता जी और योगेश जी, संजय जी। इस गीत की अनुरोध करता है टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और आशीष जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नई दिल्ली से रविंद्र सिंह चावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा जी नामदेव और अभिषेक जी नामदेव। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है तिरंगा, गीत के बोल ही इसे समझो ना रेशम की तार भैया। इस गीत की फरमाइश करता है मुकेश गुरी गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या जी गोस्वामी और अनु जी गोस्वामी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। सिद्धि सी, विशाल जी, शालिनी जी और भक्ति जी इस गीत के अनुरोध करता है। गंजडुडवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी इस गीत के अनुरोध करता है। धनुरी तेली वाला से निसार

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गुजरात से। फिल्म का नाम है सूरज और चंदा, गीत के बोल हैं तेरे नाम का दीवाना। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुरेश राठौड़, मंजुला जी राठौड़, विशाल और निशा जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अभय पाल, जेशी पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्या जी। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पाराश्विनी वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत। इसे भी जुड़ना चाह रहे मुरादाबाद से साबिया भबूब, मोहम्मद समीर अबाज, मोहम्मद हासिक जी। इस गीत के अनुरोध करता है जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। पटेल नगर मालोद से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गुड्डू जी झंझोरिया, आरजू जी झंझोरिया। इसे बीच जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष महेकर जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे तेरे नाम के दीवाने। इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आकोट महाराष्ट्र से। गीत के बोल हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है भालू पाटिल, सरिता जी पाटिल, नितिन पाटिल और नंदिनी जी पाटिल। और भी साथी जुड़ रहे हैं आकोट से ही, नितिन पाटिल और नंदिनी जी पाटिल। इस गीत की अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका जी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। इस गीत की अनुरोध करता है ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्या खुराना, आरव खुराना और पप्पी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। बोरी खुर्द से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी जी देशमुख, हर्षिता देशमुख। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी जी धाकड़। इस गीत के अनुरोध करता है पटिया कला दुर्ग से संजीव कुमार शाहू, सुजीता शाहू, शशंक जी शाहू, सीमा जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभत ज्योत और बेबी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है लोरमी छचेड़ी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल, गीत के बोल ही ओ मेरे सोनारे। इस गीत की फरमाइश करता है कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से, बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिकरा जी डावर। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं शेख हजीद और अबस जी। इस गीत की अनुरोध करता है गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से आस्था अंसारी, रिहाना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी, अनवर मास्टर लुबाना अंसारी, आलिया जी अंसारी। इस गीत की अनुरोध करता है महाराष्ट्र से श्याम कीटी, वंदना कीटी, कार्तिक कीटी, भाविका जी कीटी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहानजी अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया जी। इस गीत के अनुरोध करता है पतरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम जी नेताम। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं ओ मेरे सोनारे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानु शानू, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसे भी जुड़ना चाह रहे घंसडूडवारा सी मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। जौनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरानी शाह, अरमानी शाह, नवीदी शाह, अजरत अबूसम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्ट्रो, रोजे डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलिस डिकिस्ट्रो। भागपत यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोविन

नाज़ मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इसी बीच जुन्नाचार्य मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

आइए दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है कलाकार, गीत के बोल हैं नीले नीले अंबर पर चांद। इस गीत की फरमाइश करता है हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका जी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बीबी वेदई जोशी, बीबी हंसिका जी जोशी छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं, पूनम जी नायडू और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपी जी भाटिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी, भागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर जी। इस गीत के अनुरोध करता है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही नीले नीले अंबर पर। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागो रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बलाई छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल हैं ये गलिया ये चौबारा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है दीपक खटक, प्रमिला जी खटक, चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश डोमेन, शालिनी जी डोमेन, लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं डोली और प्रभा जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। इस गीत के अनुरोध करता है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं, रघुवीर नगर दिल्ली से जुड़ रहे हैं हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर से फातिमा राज, बीबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रही रूपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रदेश जी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल हैं ये गलिया ये चौबारा। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों, यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की इस सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़िया सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है भविष्य के परिणामों में न उलझे आज के प्रयास पर ध्यान दें।
0: जी
1: कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि जिंदगी में हम सभी के सामने कोई न कोई लक्ष्य होता है। कोई परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता है कशिश, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो कोई अपने परिवार और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोताओं कई बार लक्ष्य तक पहुंचने की चिंता इतनी बढ़ जाती है कि हम वर्तमान में किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों को ही भूल जाते हैं। हम हर बार सोचते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो क्या होगा, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा। साथियों यही सोच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को प्रभावित करने लगती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए आज हम बात करेंगे कि भविष्य की चिंता में उलझने के बजाय वर्तमान के प्रयासों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो बातें ढेर सारी हम करेंगे हमारे युवा साथियों से, लेकिन शुरुआत जैसा कि हम हर बार गीत संगीत के साथ करते हैं, तो क्यों ना आज भी पहला गीत हमारे दोस्तों को हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय भी आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि भविष्य के परिणामों में हमें नहीं उलझना है बल्कि आज के प्रयासों पर ज्यादा ध्यान देना है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि भविष्य के बारे में सोचना वैसे गलत नहीं है बल्कि श्रोता साथियों, अपने भविष्य की योजना बनाना तो एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब योजना बनाने की जगह हम लगातार परिणामों की चिंता करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि मान लीजिए कि किसी युवा को परीक्षा देनी है, वह पढ़ाई करने के बजाय लगातार यही सोचता रहे कि उसके कितने अंक आएंगे,
1: बिल्कुल,
0: परिवार क्या कहेगा, दूसरे उससे आगे निकल जाएंगे तो क्या होगा, और इन सब चीजों की वजह से उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट जाता है। इसके विपरीत अगर वह यह सोचे कि आज मुझे 2 अध्याय पूरे करने हैं, आज मुझे इतने प्रश्न हल करने हैं, आज मुझे अपनी कमियों को समझना है, तो उसका ध्यान उस काम पर ही रहेगा जिसे वह वास्तव में नियंत्रित कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: कहा जा सकता है दोस्तों कि भविष्य की चिंता ऊर्जा लेती है जबकि वर्तमान का प्रयास ऊर्जा को दिशा देता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि युवाओं की बात बहुत समझनी जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन हर परिणाम को नहीं। हम कितनी ईमानदारी से पढ़ेंगे, कितनी तैयारी करेंगे, कितनी बार अभ्यास करेंगे, इन चीजों पर हमारा नियंत्रण है।
0: जी जी।
1: लेकिन श्रोताओं, परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा आएगा, प्रतियोगिता में कितने लोग शामिल होंगे या परिस्थितियाँ कैसी होगी, इन सभी चीजों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जिसे हम बदल सकते हैं।
0: जी,
1: परिणाम की चिंता कम, तैयारी की जिम्मेदारी ज्यादा करें, और यही सोच युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही युवा साथियों, हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े लक्ष्य देखते हैं, लेकिन उन बड़े लक्ष्यों को देखकर कई बार हमारे युवा साथी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जागृति जी कि मंजिल बहुत दूर है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन किसी भी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत छोटे कदम से ही होती है दोस्तों। अगर कोई युवा एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा तो शायद वह थक जाएगा, लेकिन वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेगा तो समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आज 1 घंटा पढ़ाई, आज 1 नया कौशल सीखना, आज किसी जरूरी काम को पूरा करना और आज अपनी गलती से

0: सीखना ये कुछ छोटे कदम है जो भविष्य की नींव तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आप खुद से ये पूछिए कि मैं भविष्य में क्या पाऊंगा से पहले आज मैं क्या कर सकता हूँ।
1: जी हाँ, क्योंकि भविष्य के परिणामों की चिंता का एक बड़ा कारण असफलता का डर है। कई युवा किसी काम की शुरुआत ही इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कशिश कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन श्रोता साथियों, असफलता का डर हमें उस अवसर से भी दूर कर सकता है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। मान लीजिए श्रोता साथियों कि कोई युवा किसी प्रतियोगिता की तैयारी करता है और पहली बार सफल नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी मेहनत बेकार हो गई, उसे अपनी तैयारी की कमियां समझने का अवसर मिला, अगली बार वो बेहतर रणनीति बना सकता है। इसीलिए कशिश, असफलता को हमारे श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आप अंतिम फैसला मानने के बजाय उसे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा समझना जरूरी समझे।
0: जी हाँ, साथ ही दूसरों से तुलना भी भविष्य की चिंता बढ़ा सकती है युवाओं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के सामने तुलना की समस्या बढ़ गई है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: किसी को सफल होते देखकर हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की परिस्थिति, अवसर, रुचि और गति अलग होती है। किसी और की उपलब्धि देखकर प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी यात्रा को किसी दूसरे व्यक्ति की यात्रा से मापना उचित नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: आपका मुकाबला दोस्तों सबसे पहले अपने कल वाले रूप से होना चाहिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो ये भी आपके लिए एक प्रगति है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि भविष्य के परिणामों में हमें नहीं उलझना है, आज के प्रयासों पर ध्यान देना है। ये बातें निरंतर बनी रहेंगी हमारे युवा साथियों के साथ, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हम बात कर रहे थे भविष्य के परिणामों में हमें नहीं उलझना है, हमें आज के प्रयासों पर ध्यान देना है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले हमने भविष्य की चिंता स्वाभाविक है लेकिन उसमें उलझना सही नहीं को लेकर बात की थी। साथ ही हमने जाना था कि परिणाम हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है लेकिन प्रयास हमारे हाथ में है। आज का छोटा कदम ही कल की बड़ी उपलब्धि बनता है। साथ ही असफलता के डर से वर्तमान को खराब न करें। इसी के साथ दूसरों से तुलना भी भविष्य की चिंता बढ़ाती है। ये बातें हमने गीत से पहले कर ली थी। यही जानते हैं कशिश की, भविष्य की योजना बनाइए लेकिन वर्तमान में जीना मत भूलिए। अक्सर ऐसा होता है कि भविष्य के परिणामों में हम उलझ जाते हैं और हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं।
1: जी जी,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि भविष्य के परिणामों में न उलझे का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भविष्य के बारे में सोचना ही हम छोड़ दें। भविष्य के लिए लक्ष्य जरूर बनाने हैं, समय का सही उपयोग भी करना है, योजना भी बनानी है, लेकिन योजना के बाद उस पर काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: उदाहरण के लिए अगर बात करें कि किसी युवा का लक्ष्य सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो उसे परीक्षा की तारीख, पाठ्यक्रम और रणनीति के बारे में जानकारी रखनी होगी।
1: जी,
0: लेकिन हर दिन सिर्फ ये सोचते रहने से कि मेरा चयन होगा या नहीं, उसकी तैयारी मजबूत नहीं होगी। उसे सोचना चाहिए कि आज क्या पढ़ना है, आज कितना अभ्यास करना है और आज कौन कौन सी कमी हमें सुधारनी है।
1: बिल्कुल,
0: यही श्रोता साथियों वर्तमान पर ध्यान देना होता है और इससे
1: हाँ,
0: हमारा आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: जी हाँ जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ युवा साथियों, अपने नियंत्रण का दायरा पहचानना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती है और कुछ चीजें नहीं होती है। ऐसे में हमारे नियंत्रण में हो सकती है हमारी मेहनत, हमारी तैयारी, हमारा व्यवहार साथियों, हमारा समय प्रबंधन, हमारी सीखने की इच्छा और गलती के बाद दोबारा प्रयास करने की इच्छा।
0: जी हाँ,
1: लेकिन हमारे नियंत्रण में हर परिस्थिति, हर व्यक्ति की सोच और हर परिणाम नहीं होता जागृति जी। इसलिए युवा साथियों को अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करनी चाहिए जिन पर वे प्रभाव डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जिस चीज को बदल नहीं सकते उसकी चिंता करने से बेहतर है कि जिस चीज को हम बदल सकते हैं उस पर काम करें।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे, हमें हमारी छोटी छोटी प्रगति को महत्व देना है। कई बार हम अपनी उपलब्धियों को इसीलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम केवल अंतिम मंजिल को देखते हैं। अगर श्रोता साथियों आपने पहले किसी विषय को समझने में बहुत परेशानी महसूस की हो और अब उसमें थोड़ी समझ विकसित हुई हो तो ये प्रगति है।
1: जी,
0: अगर पहले हम अपना जो समय है वो सही तरीके से नहीं संभाल पाते थे और अब रोज का काम समय पर पूरा करने लगे हैं तो ये भी हमारी प्रगति है।
1: जी जी,
0: अगर पहले किसी गलती के बाद हम हार मान लेते थे और अब उससे सीखकर दोबारा कोशिश करते हैं तो ये भी सफलता की दिशा में कदम है।
1: जी,
0: तो दोस्तों कहना चाहेंगे कि हर छोटी प्रगति को पहचानना आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ युवा साथियों, जब भी आपको लगे कि भविष्य के परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है तो आप खुद से सिर्फ तीन सवाल पूछें। पहला ये कि मेरे नियंत्रण में अभी क्या है, दूसरा ये युवा साथियों कि मैं इस समय कौन सा एक काम कर सकता हूँ, और तीसरा ये कि इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए मुझे क्या सीखना होगा।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपको चिंता से निकालकर काम की ओर ले जा सकता है। आप याद रखिए कि युवावस्था जो होती है वो सीखने, प्रयोग करने और अपनी दिशा बनाने का समय है। इस उम्र में जागृति जी, हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। इसलिए युवाओं को केवल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि मैं अपने आज को कितना मजबूत बना रहा हूँ।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मजबूत भविष्य किसी जादू से नहीं बनता युवा साथियों, वह आज की आदतों, निर्णयों, मेहनत और अनुभव से तैयार होता है। आज की मेहनत कल की संभावनाएं बनाती है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि भविष्य के परिणामों में उलझने से बचने के लिए युवा कुछ बातों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने लक्ष्य जरूर बनाइए लेकिन लक्ष्य के डर में मत जिए। परिणाम की जगह प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटिए, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति को देखिए, गलतियों को अपनी पहचान नहीं अपनी सीख बनाइए, और जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ईमानदारी से काम कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: हर दिन के लिए छोटे और वास्तविक लक्ष्य तय कीजिए। असफलता की कल्पना में समय गंवाने के बजाय तैयारी मजबूत कीजिए। श्रोताओं, अपने आज के प्रयासों को महत्व दीजिए। याद रखिए, भविष्य आज के फैसलों से बनता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपसे कहना चाहेंगे कि भविष्य एक ऐसी किताब है जिसके सभी पन्ने आज हमारे सामने खुले नहीं है। हम ये निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि आने वाला समय क्या लेकर आएगा, लेकिन हमारे हाथ में आज का दिन जरूर है। इसलिए
1: हाँ,
0: आने वाले कल की चिंता में आज को मत खोइए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो कदम छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कदम रुकना नहीं चाहिए
1: जी।
0: अगर
1: हाँ?
0: रास्ते में कठिनाई आती है तो उसे देखकर घबराने के बजाय रास्ता समझने की कोशिश कीजिए। अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो खुद से पूछिए कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी में हमेशा वही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता कशिश जिसे हर बार मनचाहा परिणाम मिलता है। कई बार आगे वो भी बढ़ता है जो परिणाम चाहे जैसा हो सीखना और प्रयास करना बंद नहीं करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो युवा साथियों, आज की बात सिर्फ इतनी सी है कि भविष्य की योजना हमें बनानी है, लेकिन भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नहीं खोना है। परिणाम की प्रतीक्षा करने से ज्यादा जरूरी है कि आज के प्रयास को हम बेहतर बनाएं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि युवा साथियों, कल का परिणाम आज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आज की मेहनत जरूर आपके हाथ में है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में एक संकल्प लेते हैं हम सभी मिलकर कि हम परिणाम के डर में नहीं उलझेंगे, हम अपने प्रयास पर ध्यान देंगे, हम कल की चिंता में आज को नहीं खोएंगे, बल्कि आज को बेहतर बनाकर अपने कल की नींव मजबूत करेंगे।
0: बिल्कुल। तो साथियों, कल कैसा होगा ये पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज हम क्या करेंगे ये जरूर हमारे हाथ में है।
1: जी हाँ।
0: इतनी सी बात को याद रखते हुए हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का।
1: बिल्कुल।
0: पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: टकीस जाने जाऊं हूं। मैं खेत हमारा बीज बोया वो पसंद बहाई वो मिश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जन्म माते मारो अधिकार किन नती सूरी जन्म टकीस हकदार है कानून ने आवात मानी है ना पन्या पूटे तेरा हक को ले सके ना रिवाज और सच ने बदली सके बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
1: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, हम जब भी हाजिर होते हैं कार्यक्रम के माध्यम से तो हमारी आपसे बातचीत का एक नया विषय होता है। तो आज भी श्रोता साथियों, हम एक ऐसे ही नए विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा विषय है, बच्चों में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। जी हाँ श्रोता साथियों, जरा याद कीजिए, जब हम कोई काम करने की कोशिश करते थे और पहली बार में उस काम को नहीं कर पाते थे, तब हमें श्रोता साथियों सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती थी? डांट की, या श्रोता साथियों किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमारे पास बैठकर कहे, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। श्रोता साथियों, बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बच्चा जब बार बार सुनता है, तुमसे नहीं होगा, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे है, तुम हमेशा गलती करते हो, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि धीरे धीरे बातें हैं वो उनके मन में घर कर जाती हैं। फिर एक दिन वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन साथियों, अगर उसी बच्चे से अगर कहा जाए, गलती हुई है, तुम गलत नहीं हो, अभी नहीं आएगा तो सीख जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोशिश करो, तो श्रोता साथियों उसके अंदर एक नई हिम्मत जन्म लेती है। तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो इसी दस्तूर को निभाते हुए आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुकी हूँ कि आज हमारा बातचीत का विषय ही बच्चों में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी बच्चे से गलती होती है तो हम उसे डांट कर या उसकी गलतियां गिना कर उसे बार बार बोलते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उस बच्चे का आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और अगली बार वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। तो श्रोता साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बच्चा कोई काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें उसका साथ देना है। अगर उसका आत्मविश्वास कम हो जाए तो हमें कहना है कि तुम कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा तो हम तुम्हारे साथ ही, तुम कोशिश तो करो एक बार। तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि इन्हीं बातों की वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास आता है और उस काम को वो अच्छी तरीके से करने की कोशिश करता है। तो श्रोता साथियों, इसी विषय पर आधारित सुनते हैं कार्यक्रम का यह नाटक।
1: आरजू, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। पहले कितना खुश रहता था, हर चीज के बारे में पूछता था, नई नई चीजें करने की कोशिश भी करता था, लेकिन अब कोई काम दे दो तो पहले ही कह देता है मुझसे नहीं होगा।
2: अच्छा, तुमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों लगता है उसे?
1: पूछती हूँ, लेकिन वह ज्यादा कुछ बताता ही नहीं, बस चुप हो जाता है।
2: अच्छा, और जब वो कोई काम गलत कर देता है तब तुम क्या करती हो?
1: सच बताऊँ, कभी समझाती हूँ तो कभी गुस्से में डांट देती हूँ।
2: ओ, क्या कभी तुमने उससे ये कहा है कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, या फिर देखो दूसरे बच्चे तुमसे कितने अच्छे हैं?
1: हाँ, ऐसा तो मैंने कई बार कहा है।
2: सुमन, शायद तुम्हारा उद्देश्य उसे बुरा महसूस कराना नहीं था, तुम तो चाहती थी कि वह अच्छा करे, है ना?
1: हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि वह आगे बढ़े।
2: हाँ, लेकिन कभी कभी हमारी चिंता ही हमारे बच्चे के मन में डर पैदा कर देती है।
1: तो क्या आरजू, बच्चे को उसकी गलती पर कुछ कहना ही नहीं चाहिए?
2: क्यों नहीं, गलती समझाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे की गलती और बच्चे को एक ही चीज मत समझो।
1: मतलब?
2: अगर बच्चे ने गणित का सवाल गलत किया है तो ये कहो, चलो देखते हैं सवाल कहाँ गलत हुआ है। ये मत कहो कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात बच्चे को सुधारने का रास्ता देगी, जबकि जो दूसरी बात है वो उसे अपने बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर सकती है।
1: और दूसरों से तुलना?
2: तुलना करने के बजाय उसकी अपनी प्रगति देखो। अगर कल वह 2 लाइन पढ़ता था और आज 4 लाइन पढ़ रहा है, तो उन 4 लाइनों की खुशी मनाओ। अगर पहले वह किसी के सामने बोलने से डरता था और आज उसने 2 वाक्य बोले हैं, तो उसकी उस हिम्मत को पहचानो।
1: यानी कि आरजू, छोटी कोशिश भी बच्चों के लिए बड़ी बात हो सकती है।
2: बिल्कुल हो सकती है, कई बार हमारी नज़र में जो छोटी बात होती है ना, वही बच्चों के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है।
1: मैं अक्सर उसे कहती हूँ कि तुम कर सकते हो।
2: हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस इतना कहना काफी नहीं है।
1: तो फिर और क्या करूँ?
2: जब बच्चा किसी काम से डर रहा हो तो उससे कहो कि चलो पूरा काम अभी नहीं करते, पहले थोड़ा सा करके देखते हैं, और जब वह असफल हो जाए तो उससे कहो कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार तुम क्या बदल सकते हो। और जब वह अपनी बात बताना चाहे तो कुछ देर अपना काम रोक कर उसकी बात सुनो।
1: इससे आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा?
2: जब बच्चे को लगता है कि उसकी बात सुनी जाती है सुमन, और उसकी कोशिश देखी जाती है, उसकी गलती पर उसे अपमानित नहीं किया जाता है, तब उसके मन में धीरे धीरे यह भरोसा बनता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं कुछ नया सीख सकता हूँ और मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ, और यही एक बच्चे का आत्मविश्वास होता है।
1: अच्छा, ऐसा क्या? आरजू, आज मुझे अपनी एक बात याद आ रही है। कल मेरे बच्चे ने अपने हाथ से एक चित्र बनाया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैंने कह दिया कि कैसा बनाया है, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे चित्र बनाते हैं। वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप चित्र लेकर चला गया।
2: हाँ, शायद हो सकता है कि उस समय उसे चित्र से ज्यादा तुम्हारे शब्द याद रह गए होंगे।
1: हो सकता है, अब मुझे बुरा लग रहा है, और तब उसका चेहरा पूरा उतर गया था।
2: अच्छा, तो तुम बुरा मत मानो, सबसे जरूरी बात तो ये है कि अब तुम्हें समझ आ गया है, अगली बार वह जब चित्र बनाए तो उससे तुम पूछना कि तुमने इसमें जा गया है, अगली बार वह जब चित्र बनाए तो उससे तुम पूछना कि तुमने इसमें ये चीज क्यों बनाई, उसकी कल्पना के बारे में बात करना। जरूरी नहीं है सुमन की हर चित्र सुंदर हो, लेकिन बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी कोशिश और उसकी कल्पना की कद्र की जाती है।
1: मैं समझ गई। बच्चों को हर बार ये बताना जरूरी नहीं है कि वह सबसे अच्छा है, उसे ये महसूस कराना जरूरी है कि तुम्हें सीखने और कोशिश करने का पूरा हक है।
2: बिल्कुल सुमन।
1: एक बात और बताओ अर्जुन।
2: वो क्या?
1: सकारात्मक सोच का मतलब बच्चों को हमेशा खुश रखना होता है क्या?
2: नहीं सुमन, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कभी दुखी या निराश ही ना हो। अगर बच्चा असफल हुआ है तो उसे दुख हो सकता है, डर लग सकता है और गुस्सा भी आ सकता है। ऐसे में हमें उसकी भावनाओं को दबाना नहीं है। हमें ये कहना है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, ये ठीक है, लेकिन अब सोचते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। यानी कि बच्चे को परेशानी से भागना नहीं, बल्कि परेशानी के बाद रास्ता खोजना हमें सिखाना है।
1: बिल्कुल, अब समझ आया। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हर चीज अच्छी ही होगी, बल्कि यह है कि मुश्किल आने पर भी हम सोचे इससे आगे कैसे बढ़ना है।
2: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, बच्चों का आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं बनता, यह रोज हमारे व्यवहार, हमारी भाषा और हमारे छोटे छोटे फैसलों से बनता है। इसीलिए अगली बार जब आपका बच्चा गलती करे साथियों, तो उसे तुरंत फैसला मत सुनाइए। जब वह किसी काम से डरे तो उसका मजाक मत बनाइए। जब वह दूसरे बच्चों से पीछे रह जाए तो उसकी तुलना मत कीजिए। बस श्रोता साथियों, उसके पास बैठिए और इतनी सी बात बोलने की जरूरत है कि कोई बात नहीं, सीखने में समय लगता है। जी हाँ श्रोता साथियों, जब वह बच्चा कोशिश करे तो

आभास मिलता है, फिर वह कोशिश करता है, कोशिश से अनुभव मिलता है और अनुभव से सफलता। इसीलिए आज से ही बच्चों को सिर्फ यह मत सिखाइए कि जीतना कैसे है, उन्हें यह सिखाइए कि हार के बाद खुद को कैसे संभालना है, गलती के बाद फिर से कैसे शुरू करना है और डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है। यही सकारात्मक सोच श्रोता साथियों असली आत्मविश्वास है। और शायद एक माँ के रूप में आज अपने बच्चों से एक जरूरी बात जरूर कहिए, तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सीखते रहने की कोशिश करने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो साथियों आज अपने बच्चों से एक बात जरूर कहिए, मुझे तुम पर भरोसा है। हो सकता है श्रोता साथियों कि यह शब्द आपके लिए सिर्फ चार शब्द हो, लेकिन किसी बच्चे के लिए यही चार शब्द उसके अंदर की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसी विश्वास के साथ साथियों आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथ ही श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
1: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चक चो।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: जी धन्यवाद
1: सर। जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम खेती बाड़ी से निरंतर जुड़ते रहते हैं और खेती से जुड़ी विशेष जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को देते जी। हैं, तो सर आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है फसल की लागत का हिसाब रखना क्यों जरूरी है
0: जी। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारे जो किसान भाई है उनके लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम जो लागत है उसके खर्चे रखना और फिर उसका आकलन करना वो बहुत जरूरी होता है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हम क्या उस खेती के पीछे कितना बीज का जो है कितना खर्चा हुआ, खाद कितना खर्चा हुआ आपका, और अपनी मजदूरी घर वालों की कितनी लगी, बाहर से अगर कोई मजदूर लगाए तो कितने लगाए, सिंचाई में कितना पैसा खर्च हुआ, आपने कोई दवाई लाके डाली या आपने बनाई तो उस पर कितना खर्चा हुआ,
1: बिल्कुल
0: आपने अगर निराई गुड़ाई या जुताई करवाई है या बुआई करवाई है तो उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। तो ये जो खर्चे हैं तो अगर हमारे जो किसान भाई इनका अगर हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि वो फिर पता ही नहीं चल पाता है कि कितना आपको लाभ हुआ या कितनी आपको हानि हुई, तो वो आकलन नहीं कर सकते
1: बिल्कुल।
0: और इन चीजों का जब हिसाब नहीं रखते हैं तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि हमने उस खेत के पीछे या उस फसल के पीछे कितनी मेहनत और कितना पैसा खर्च किया है। तो उसका खर्चा रखना हम लोगों के लिए जरूरी होता है। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे घर की मजदूरी है तो उसका आप अनुमानित लगा सकते हैं कि आप 3 से 4 घंटे जा रहे हो तो उस हिसाब से, लेकिन जो अन्य महत्वपूर्ण खर्चे हैं जो उनका तो हमें हिसाब रखना जरूरी होता है
1: जी जी।
0: जिसमें आप देखेंगे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते जैसे बीज है तो खरीदा हुआ बीज जो है आपका कितना है, आपने कितने का खरीदा है और कितना किलो बीज आपने घर से उपयोग किया,
1: बिल्कुल
0: तो दोनों का आप लिखें उनका अनुमानित खर्चा और जो बाजार से अगर आप खरीदा है तो उसका जो एक्चुअल है वो आप लिखें
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह जैसे खेत की तैयारी की हम बात करते हैं बुआई से पहले, तो आपने जुताई करवाई बुआई कराई या खेत में तैयारी करवाई उसके खरपतवार है या उसकी सफाई करवाई तो उसके पीछे कितना खर्चा हुआ
1: जी जी,
0: ये हमें रखना जरूरी है। इसके साथ में ही हम क्या है कि फसल बोने से पहले खेत में बहुत सारे पोषक तत्व जैसे खाद है, कंपोस्ट है, जैविक खाद है, तो ये सब डालते हैं
1: जी जी।
0: तो आपने कितना डाला उनकी मात्रा और अनुमानित जो है कि इतना पैसे का कम से कम जो है हमारा खाद था तो वो रखना जरूरी है। इसके साथ में जो हम बात करते हैं जैसे परिवार और जो बाहर की मजदूरी है उसका भी आप ध्यान रखें कि परिवार के लोग अगर 1 बीघा जमीन है तो उसके पीछे कितने दिन अपने लगे हैं,
1: कर रहे हैं बिल्कुल
0: जी, जिसमें आपकी निराई गुड़ाई हो गई या आपने खरपतवार निकाला है या उसमें कुछ चारा है वो लिया उससे, या आप मान लो 4 घंटे उसकी रखवाली करने जा रही हो
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह से जो घर की मजदूरी का भी आप हिसाब रखें। इसके साथ में अगर बाहर से कुछ मजदूर आप लगाते हैं तो कितने मजदूर लगे तो वो भी आप हिसाब रखें
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ में ही सिंचाई की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई है जो सिंचाई कई किसान जो हमारे नहर उसी सिंचाई होती है, कहीं जो पंप है कहीं जो बिजली वाले पंप है और कई बार है जो हम डीजल इंजन का उपयोग करते हैं
1: बिल्कुल।
0: तो हमें हिसाब रखना चाहिए कि आपने कितना डीजल जलाया उस खेत के पीछे उतनी जमीन के पीछे और कितने पैसे का डीजल लगा आपका। इसी तरह से अगर लाइट का बिल है तो आप निकाले कि हाँ इतनी लाइट जो है इस खेती के पीछे खर्च हुई, तो मासिक आप उसको दर्ज करें और उसका हिसाब रखें। इसी तरह जैसे हमने बात की थी फसल सुरक्षा की, तो फसल सुरक्षा में है जैसे कीट प्रबंधन के लिए आपने अगर कुछ दवाई का उपयोग किया हो या घर पे अगर कोई दवाई बनाई हो तो उसके पीछे और उसके पीछे दोनों के पीछे आपका कितना खर्चा हुआ वो भी आप मासिक उसमें लिखें और कितनी बार आपने दवाई बनाई या दवाई लाई। इसी तरह जैसे निराई गुड़ाई है इसके आगे कटाई है, जैसे कटाई की बात करते हैं तो कटाई में आजकल 2 तरीके हैं हमारे यहाँ, तो परंपरागत का तरीका है हम हाथ से काटते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन कई जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं जैसे मशीन से कटाई करवाते हैं या मजदूर लगाते हैं, तो आपको जो प्रति बीघा के पीछे आपकी कितनी मजदूरी लगी वो आपको लिखना चाहिए, उसका हिसाब रखना चाहिए। उसको अगर बाजार में आप बेचने गए या बाजार से आप कुछ लाने ले जाने गए हैं तो उसका परिवहन का जो खर्चा होता है वो भी आप लिखे स्पेशल खेती के पीछे। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं ये सारे खर्चे हमको लिखना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा आपको और ये जान पाओगे आप कि आपने की लागत कितनी रही
1: बिल्कुल,
0: और लागत की तुलना में आपका लाभ कितना रहा या उत्पादन कितना हुआ।
1: बिल्कुल सर आपने सही कहा, जैसा कि आपने बताया कि फसल की लागत में हमें किन किन चीजों को विशेष तौर पर शामिल करने की जरूरत है, यही जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि अगर ये सारी चीजों की जानकारी हम रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वास्तविक लागत हमें कितनी लग रही है और लाभ हमें क्या मिलने वाला है। यही सर, लागत का हिसाब रखना क्यों जरूरी है, इससे हमारे किसान भाई बहनों को क्या लाभ मिलेगा?
0: जी, तो देखिए, लागत और उत्पादन दोनों का हिसाब रखना इसलिए जरूरी है कि आपके खेत में, अगर मान लो आपके पास 5 बीघा जमीन है,
1: बिल्कुल,
0: तो 5 बीघा जमीन के पीछे आपका कितना खर्चा हुआ और अंत में उसमें कितना उत्पादन हुआ। मान लो कि आपको 20,000 रुपए का खर्चा हो गया 5 बीघा के पीछे और उत्पादन आपके वहाँ 30,000 हुआ। मान लो अगर आपके पास हिसाब नहीं है तो आप 20 में से 30 का पता नहीं कर पाओगे। आपको या तो सब ऐसा ही लगेगा बहुत सारा 30,000 की पैदा हुई है टोटल, लेकिन उसके पीछे कितना खर्चा हुआ वो आप उसका आकलन नहीं कर पाओगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक जरूरी है इसके कारण। दूसरा कि जब क्या होता है कि हम लोगों को जब हम लागत और सारी चीजें जोड़ते हैं तो हमें ये लाभ होता है कि हमें कौन सी फसल जो ज्यादा लाभदायक रही।
1: बिल्कुल,
0: अगर हर फसल का आप हिसाब रखते हो तो आप अगर मक्का है, तुअर है, अगर मूंग है, उड़द है, या आपने मूंगफली करी है, तो इनके पीछे क्या है कि आपको पता रहेगा कौन सी फसल ज्यादा फायदेमंद है और कम पैसा किसमें खर्च होता है।
1: जी जी,
0: ये लाभ होगा। दूसरा है कि आपको पता चलेगा कि अगले मौसम में आप उसके और बेहतर योजना बना सकते हो सकता है कि आपके अनुसार जो खाद बीज और मजदूरी बहुत ज्यादा लगी हो जैसे मक्का के पीछे, लेकिन अगर अगली बार आप सोचेंगे तो आप लोगों की तुअर उसमें लगा सकते हैं। तो योजना बनाने में आपका वो जो हिसाब किताब है वो आपको काफी मदद करता है। दूसरा कि कभी कभी क्या होता है कि हमें अंत में पता लग जाता है कि 5,000 का हमारा ऐसे ही खर्चा हो गया, मतलब अन्य खर्च हो गए, जैसे जरूरत ही नहीं थी लेकिन हमने खर्च कर दिया।
1: जी जी,
0: तो इसमें क्या होता है कि अगली बार आप करोगे तो आपको पता रहेगा कि 5,000 का खर्चा मैं कम कर सकता हूँ, तो वो आप वहीं से निकाल पाओगे जब आपके पास हिसाब रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह जैसे बाजार में सही कीमत तय करने में भी मदद करता है कि जैसे हम मक्का के पीछे, मान लो आपने 5 बीघा मक्का है तो आपको 25 क्विंटल उत्पादन हुआ, 25 क्विंटल के पीछे आपने अगर मान लो कि 20,000 या 10,000 जो भी खर्चा हुआ तो उसका हिसाब रहेगा, तो आप जो है हमेशा ये सोच के उसको बेचेंगे कि मुझे कुछ तो लाभ होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अन्यथा क्या होता है कि खेत में कितना भी खर्चा हुआ, कितना भी लगा और जैसे निकली और हम बाजार में ले जाते हैं
1: जी हाँ।
0: तो वहाँ आपको भाव है उसकी उतना नहीं मिलेगा, वो 10-12-15 रुपए किलो आपसे ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या है कि वो हमारे अंदर एक चीज, एक सोच विकसित करता है, वो हिसाब किताब जो हम रखते हैं कि हाँ मेरा इतना तो खर्चा हुआ, कम से कम मुझे लाभ होना चाहिए, तभी मैं इसको सेल करूंगा या बेचूंगा। तो ये एक फायदा होता है। दूसरा है कि परिवार की जो मेहनत होता है उसको हम कभी गिनते नहीं है, लेकिन वो भी तो एक मेहनत है
1: जी हाँ।
0: तो उसका एक जो मेहनत है उसके मूल्य समझ आता है हमको कि हाँ अगर मान लो आपने 1 बीघा के पीछे अगर 30 दिन लगा दिया, तो 30 दिन में अगर 1 बीघा में 5 क्विंटल हुई तो 30 दिन का आप 300 के हिसाब से आप जोड़ते हो पैसा, तो आपका 3-9 हजार तो आपका जो है मजदूरी लग गई उसके पीछे, जबकि उसमें इतना पैदा ही नहीं हुआ। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें आपको मदद मिलती है। दूसरा कि खेती को और कैसे बेहतर किया जा सकता है अधिक लाभ कमाने के लिए, वो सोच आपके अंदर विकसित होगी इन चीजों को लेकर। तो इन सारी चीजों को हम दोनों लोगों को पता होना चाहिए और उसका भी एक बढ़िया से आप मोटा मोटा लिख सकते हो कि मैंने इस महीने में ये 5 किलो बीज बोया था।
1: बिल्कुल,
0: और इसका इतना रुपया हुआ, 5 किलो मैंने घर से बीज लाया और इसका इतना रुपया हुआ। तो इस तरह जो है आप उन खर्चों का जो है पूरा हिसाब किताब रखें।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई बहनों को जो खेती का हिसाब है अगर वो रखते हैं तो किस तरीके से कई सारे फायदे मिलते हैं। यही सर, अब आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे खेती में मिलने वाली जो लागत है उसका हिसाब रखते हुए उन्हें लाभ भी मिल पाए और आय का जो स्रोत है वो पहली बार उन्हें उसमें लाभ नहीं मिल रहा है तो अगली बार वाली जो खेती है उसमें उस लाभ को वो प्राप्त कर पाए और अपने आजीविका को सुचारू रूप से चला पाए।
0: जी, तो मैं सभी किसान भाइयों से यही संदेश देना चाहूंगा कि आज से हर किसान अपनी फसल के खर्च का जो छोटा से छोटा हिसाब है वो रखना शुरू करे। छोटा हिसाब भी हो सकता है आपका बड़ा बदलाव लेकर आए।
1: बिल्कुल,
0: तो आप हमेशा हिसाब रखें, उसका आकलन करें और अगले साल की या अगली फसल की प्लानिंग करें।
1: बिल्कुल सर, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: जिम की बहन बोनू अपने अपने वैस में मंगीलाल जी जुड़े तक कहा था ने एने आपने घनी असल तरीका की घना कानी बातें बताड़ी है। आशा कर रहा हूँ की हंगरी बातें आपने गमी होंगी। કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું. તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લે એક ઓર ગીત મોરે પડા સૂટા.

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित थारी में

पासो लावो जूनू हवाल, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है, बेटी की शिक्षा को केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य में निवेश के रूप में सामने रखे। जिस समाज की बेटियां शिक्षित होती है अंजलि, उस समाज की आने वाली पीढ़ियां स्वयं ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: बेटी को पढ़ाना केवल एक बच्चे को शिक्षित करना नहीं बल्कि एक पूरे परिवार, एक पीढ़ी और अंततः पूरे समाज के भविष्य को मजबूत बनाना है। इसलिए बेटी की शिक्षा खर्च नहीं बल्कि समाज का सबसे दूरगामी और सबसे बड़ा निवेश है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को पहले गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है बेटी की शिक्षा को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि अंजलि, बेटी की शिक्षा के महत्व को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो जब एक बेटी पढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, बल्कि एक परिवार की सोच बदलती है, एक पीढ़ी का भविष्य संवरता है और समाज विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए बेटी की शिक्षा को केवल परिवार की जिम्मेदारी या खर्च मानना उचित नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: ये समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य में किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। श्रोता साथियों, जिस समाज में बेटियों को शिक्षा के अवसर मिलते हैं, वहाँ जागरूकता, आत्मनिर्भरता, समानता और विकास की संभावनाएं अधिक मजबूत होती है। बेटी किसी परिवार की जिम्मेदारी भर नहीं बल्कि परिवार और समाज की शक्ति है। श्रोता साथियों, उनके सपनों को शिक्षा का सहारा मिल जाए तो वह जीवन को नई दिशा देने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है। आज बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, चिकित्सा, तकनीक, कृषि, व्यवसाय और अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। ये परिवर्तन हमें बताता है जागृति जी कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि, आमतौर पर निवेश का अर्थ ऐसी जगह संसाधन लगाना होता है जहां भविष्य में उसका लाभ मिले। यदि यही बात शिक्षा पर लागू करें तो बेटी की शिक्षा से मिलने वाला लाभ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक शिक्षित बेटी अपने परिवार को जागरूक करती है, बच्चों की शिक्षा को महत्व देती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजग रहती है तथा समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। इसलिए बेटी की शिक्षा में लगाया गया समय, धन और प्रयास भविष्य की कई पीढ़ियों को मजबूत करने का माध्यम बन जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, परिवार समाज की पहली इकाई है और बेटी उस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा। जब श्रोता साथियों, बेटी शिक्षित होती है तो वह अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझती है। वह परिवार से जुड़े निर्णयों में अपनी राय रखती है और समस्याओं को समझकर उनके समाधान में योगदान दे सकती है।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिक्षा बेटी में केवल किताबी ज्ञान नहीं भरती बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है, और यही क्षमता जागृति जी आगे चलकर परिवार को मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा से हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बनती है। बेटी की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम आत्मनिर्भरता है। शिक्षा बेटी को अपने हुनर को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर देती है। हमारी जो बेटियां हैं वो नौकरी, व्यवसाय, उद्यमिता, कृषि, तकनीक या किसी अन्य क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, आत्मनिर्भर बेटी, बहन, महिलाएं अपने जीवन के फैसलों को अधिक समझदारी से लेने में सक्षम होती है। वो परिस्थितियों के सामने केवल मजबूर होकर खड़ी नहीं रहती बल्कि समाधान खोजने का प्रयास करती है। यही आत्मनिर्भरता समाज को मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि एक शिक्षित बेटी भविष्य में माँ बनती है तो उसकी शिक्षा का प्रभाव अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। वह अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संस्कारों को अधिक महत्व देती है।
0: जी हाँ।
1: वह बच्चों में प्रश्न पूछने, सीखने और आगे बढ़ने की भावना पैदा कर सकती है। इस प्रकार एक बेटी को पढ़ाने का लाभ केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, उसका ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसलिए बेटियों की शिक्षा वास्तव में पीढ़ियों के भविष्य में किया गया निवेश है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुरीतियों के खिलाफ शिक्षा की शक्ति भी बहुत अलग है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, बताना चाहेंगे कि समाज में समय समय पर अनेक कुरीतियां और भेदभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाल विवाह, दहेज, लैंगिक भेदभाव और बेटियों की शिक्षा को कम महत्व देना जैसी समस्याएं। श्रोता साथियों, समाज के विकास में बाधा बनती है। शिक्षा जागरूकता का सबसे प्रभावी माध्यम है क्योंकि जागृति जी, शिक्षित बेटी अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जान सकती है। वह गलत परंपराओं और भेदभाव को समझने की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा उसे अपने जीवन और भविष्य के प्रति सजग बनाती है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बेटी की शिक्षा के महत्व को लेकर, तो ये बातें निरंतर हमारी बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि हमने गीत से पहले जाना कि किस तरीके से शिक्षा जो है वो कुरीतियों के खिलाफ अपनी शक्ति को दर्शा सकती है, यही बात आती है बेटा बेटी में समानता की। तो जागृति जी, किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब बेटों और बेटियों को समान अवसर मिले।
1: बिल्कुल।
0: यदि परिवार बेटी की शिक्षा को आवश्यक और बेटी की शिक्षा को वैकल्पिक समझता है तो वह अपनी ही आधी शक्ति को विकास से दूर कर देता है। बेटी को स्कूल भेजना ही पर्याप्त नहीं है श्रोता साथियों, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, आवश्यक संसाधन और अपनी प्रतिभा विकसित करने के अवसर भी मिलने चाहिए। समान अवसर ही, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, वास्तविक समानता की शुरुआत है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा का महत्व और भी अधिक है। गाँव की शिक्षित बेटी अपने परिवारों के साथ साथ पूरे समुदाय में जागरूकता ला सकती है। वो स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा, डिजिटल तकनीक, कृषि और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे दूसरों तक पहुंचा सकती है।
0: जी जी।
1: अगर गांव की बेटियां शिक्षित और जागरूक होगी तो गांव की नई पीढ़ी भी अधिक जागरूक बनेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि बेटी की शिक्षा ग्रामीण विकास की मजबूत नींव बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: डिजिटल युग में भी बेटियों की शिक्षा महत्व रखती है अंजलि। आज का समय तकनीक और डिजिटल ज्ञान का समय है और शिक्षा अब केवल किताब और कक्षा तक सीमित नहीं रही। इंटरनेट, डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और तकनीकी साधनों ने सीखने के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन इन अवसरों का लाभ तभी लिया जा सकता है जब बेटियों को डिजिटल शिक्षा और तकनीक का सुरक्षित एवं सही उपयोग सिखाया जाए।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, डिजिटल ज्ञान बेटियों को देश दुनिया की नई जानकारी और नए अवसरों से जोड़ सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि बेटी की शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, वास्तविक शिक्षा वह है जो जीवन जीने की समझ विकसित करे। बेटियों को निर्णय लेने, संवाद करने, समय का सदुपयोग करने, वित्तीय समझ विकसित करने और तकनीकी का सही उपयोग करने और समस्याओं का समाधान खोजने जैसे जीवन कौशल भी सिखाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब शिक्षा ज्ञान के साथ आत्मविश्वास और जिम्मेदारी भी देती है तब उसका प्रभाव और अधिक व्यापक हो जाता है। श्रोता साथियों, बेटी की शिक्षा की शुरुआत घर से होती है। परिवार को उसकी पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि जागृति जी, माता पिता को बेटी की रुचि और प्रतिभा को समझते हुए उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। बेटी को यह महसूस होना चाहिए कि उसके सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने परिवार के किसी अन्य सदस्य के। उसके प्रश्न को दबाने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। घर का सकारात्मक वातावरण उसके आत्मविश्वास को मजबूत करता है।
1: बिल्कुल। हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि विद्यालय बेटी के व्यक्तिगत निर्माण का महत्वपूर्ण शिक्षक है। शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व, अनुशासन और रचनात्मक सोच विकसित करनी है। और हम देखते हैं कि सारे शिक्षक ये सब चीजें करते भी हैं।
0: बिल्कुल।
1: विशेष रूप से उन बेटियों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है जो आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाती है। एक शिक्षक का छोटा सा प्रोत्साहन भी किसी बेटी के जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही बहन बेटी के बारे में बात करें तो शिक्षा केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, समाज को भी ऐसे वातावरण बनाने होंगे जहां हर बेटी सुरक्षित होकर स्कूल जा सके और अपनी शिक्षा पूरी कर सके। समुदाय, पंचायत, विद्यालय, स्वयंसेवी संस्था और जागरूक नागरिक मिलकर बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा में सहयोग करना समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि शिक्षित और कुशल महिलाएं देश की अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जब बेटियां शिक्षा प्राप्त करके रोजगार, व्यवसाय या उद्यमिता से जुड़ती हैं, तो उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ती है। इससे श्रोता साथियों, केवल उनका व्यक्तिगत जीवन बेहतर नहीं होता, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज की उत्पादक क्षमता भी मजबूत होती है। इसलिए बेटियों की शिक्षा सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास का भी आधार है। हम देखते हैं कि कई बार प्रतिभा होते हुए भी अवसरों की कमी के कारण बेटियां पीछे रह जाती हैं। शिक्षा उन्हें अपनी क्षमता पहचानने का अवसर देती है। जब वह अपने ज्ञान और कौशल पर भरोसा करना सीखती है श्रोता साथियों, तो उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास से भरी बेटी अपने सपनों को लक्ष्य में बदल सकती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकती है।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, बहन बेटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले समाज की सोच बदलनी होगी। हमें मानना होगा अंजलि कि बेटी किसी से कम नहीं है। उसके शिक्षा पर किया गया खर्च परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि भविष्य के लिए मजबूत आधार है। हमें बेटियों से ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें इतना पढ़कर क्या करना है, बल्कि श्रोताओं हमें ये पूछना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहती हो और हम तुम्हारे सपने पूरा करने में तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही सोच वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत करेगी, क्योंकि बेटी की शिक्षा वास्तव में समाज के भविष्य की शिक्षा है। एक बेटी को पढ़ाने से उसके जीवन में अवसर बढ़ते हैं, परिवार जागरूक होता है और आने वाली पीढ़ी मजबूत होती है, साथ ही समाज भी विकास की ओर बढ़ता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हमें यह भी समझना होगा कि शिक्षा किसी एक वर्ग, लिंग या परिवार का अधिकार नहीं, बल्कि हर बच्चे का मूल आधार है।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चों को समान अवसर मिलेंगे, तभी समाज की आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ पाएगी। श्रोता साथियों, बेटी की शिक्षा को केवल एक अभियान न बनाकर सामाजिक संकल्प बनाएं। हर बेटी के हाथ में किताब हो, उसकी आंखों में सपने हो और उसके कदमों के सामने अवसरों की खुली राह हो, क्योंकि एक बेटी को पढ़ाना एक परिवार को जगाना है।
1: बिल्कुल,
0: परिवार को जगाना एक पीढ़ी को संवारना है और एक पीढ़ी को संवारना पूरे समाज के भविष्य को मजबूत बनाना है।
1: तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है नमक, चीनी और तेल जीवन में संतुलन क्यों जरूरी है को लेकर। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम जानेंगे ढेर सारी बातों को कि किस तरीके से नमक और चीनी का संतुलन हमें बनाकर रखना चाहिए। श्रोता साथियों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें बात करने वाली क्या खास बात है। नमक तो खाने में स्वाद बढ़ाता है और चीनी मिठास देती है और तेल जो है वो सब्जी और दाल को पकाने में काम आता है।
0: बिल्कुल,
1: फिर इसमें संतुलन की एक बात क्यों? तो जरा अपने आप से 3 सवाल पूछिए कि क्या स्वाद बढ़ाने के लिए हम खाने में जरूरत से ज्यादा नमक तो नहीं डाल रहे? क्या चाय या शरबत या मिठाई के जरिए हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा चीनी तो नहीं जा रही? और क्या खाना बनाते समय तेल की मात्रा का हमें सच में अंदाजा रहता है? अगर इन सवालों का जवाब सोचने पर आपको भी थोड़ा सा रुकना पड़े तो आज कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में हम जानेंगे बहुत सी ढेर सारी बातों को। तो आप अवश्य बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं नमक, चीनी और तेल भोजन में संतुलन क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा, पोषण, स्वस्थ रहने की शक्ति प्रदान करता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम रोजाना कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिसमें अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, दही, मसाले, नमक, चीनी और तेल शामिल होते हैं। इन सभी चीजों के श्रोता साथियों अपनी अपनी उपयोगिता होती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन किसी भी चीज की आवश्यकता से अधिक सेवन करने से अंजलि जी, हम देखते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: नमक, चीनी और तेल हमारे भोजन के तीन ऐसे घटक है साथियों, जिनका उपयोग लगभग हर घर में होता है। नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है, चीनी मिठास देती है और तेल भोजन बनाने में तथा शरीर को ऊर्जा देने में सहायता करता है।
1: बिल्कुल मनीषा, सबसे पहले एक बात समझना हमारे लिए जरूरी है कि नमक, चीनी और तेल को पूरी तरह दुश्मन मानना सही नहीं है। हमारे शरीर को कुछ मात्रा में वसा यानी कि फैट की जरूरत होती है। नमक में मौजूद सोडियम शरीर के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाता है, वहीं चीनी और अन्य कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं। समस्या श्रोता साथियों तब शुरू होती है जब इन चीजों की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। हमारे भोजन में अक्सर समस्या किसी एक दिन ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि रोज रोज थोड़ी थोड़ी अतिरिक्त मात्रा लेने की आदत से पैदा होती है।
0: बिल्कुल,
1: एक चम्मच अतिरिक्त नमक जो है वो आज शायद बड़ी बात न लगे, लेकिन अगर यही आदत लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर पर इसका असर पड़ सकता है। इसी तरह चाय में 2 चम्मच चीनी, दिन में कई बार मीठी चाय, बिस्किट, मिठाई, मीठे पेय और पैकेज वाले खाद्य पदार्थ, इन सबको जोड़कर देखें तो कुल चीनी काफी बढ़ सकती है। तेल के साथ भी यही बात है, सब्जी में थोड़ा तेल जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर तलने भूनने की आदत ज्यादा हो जाए तो भोजन की कुल ऊर्जा और वसा भी बहुत बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि नमक है वो हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नमक में श्रोता साथियों मुख्य रूप से सोडियम पाया जाता है, जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने, तंत्रिका तंत्र को सामान्य कामकाज और मांसपेशियों के कार्यों में सोडियम की भूमिका होती है। हम देखते हैं कि हमारे भोजन में नमक बिल्कुल न हो तो श्रोता साथियों भोजन फीका लगने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिक नमक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शरीर को नमक की थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन में इसका उपयोग संतुलित मात्रा में किया जाता है। आजकल श्रोता साथियों बहुत से लोग ऊपर से अतिरिक्त नमक डालकर खाने की आदत को अपना रहे हैं। इसके अलावा अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स और नूडल्स, ऐसे कई पैकेज खाद्य पदार्थ हैं अंजलि जी, उसमें हम देखते हैं कि सोडियम है वो ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए श्रोता साथियों केवल खाने में डाला गया नमक ही नहीं, बल्कि पूरे दिन में खाए गए सभी खाद्य पदार्थों से मिलने वाले नमक पर भी हमें ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, नमक स्वाद के लिए है, स्वाद का आधार नहीं। अगर भोजन में प्राकृतिक स्वाद, मसाले, हरी सब्जियां, नींबू, धनिया, जीरा, लहसुन और अन्य मसालों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए तो नमक की मात्रा धीरे धीरे कम की जा सकती है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, खाना पकाते समय नमक को नाप कर डालें। खाने के ऊपर से बार बार नमक डालने की आदत कम करें। इसी के साथ श्रोता साथियों, नमकीन और पैकेट वाले स्नैक्स कम लें, अचार पापड़ का सेवन सीमित मात्रा में करें, बच्चों को बहुत ज्यादा नमकीन स्वाद का आदि न बनाएं। भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू और मसाले का इस्तेमाल करें। श्रोता साथियों, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें नमक के संतुलन को बनाने में मदद करती है।
0: जी हाँ।
1: आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि चीनी का संतुलन और तेल का संतुलन हमें कैसे बनाकर रखना है, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने नमक के बारे में जाना कि नमक का संतुलन हमें कैसे रखना है।
1: जी हाँ।
0: यही बात करें चीनी की तो श्रोता साथियों, मिठास किसे पसंद नहीं होती है। चाय में चीनी, त्योहार की मिठाई, गर्मी में शरबत, कभी हलवा तो कभी बिस्किट। लेकिन हमें यह समझना होगा कि चीनी केवल चीनी के डिब्बे से नहीं आती, बाजार में मिलने वाले कई खाद्य और पेय पदार्थ में भी अतिरिक्त यानी कि फ्री शुगर हो सकती है। मिठाइयाँ, मीठे बिस्किट, केक, पेस्ट्री, मीठे पेय, पैकेज जूस, शरबत, इसी के साथ मीठी चाय और कॉफी और कई तरीके के पैकेज्ड खाद्य पदार्थ। श्रोता साथियों, WHO मुक्त शर्करा को कुल दैनिक ऊर्जा के 10% से कम रखने की सलाह देता है। 5% से कम करने का अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि घर में मीठा बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि जरूरत है मात्रा और आदत पर ध्यान देने की। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मनीषा दिन में 4 से 5 बार चाय पीता है और हर कप में ज्यादा चीनी डालता है, तो केवल चाय से ही काफी अतिरिक्त चीनी शरीर में पहुंच सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मैंने आज मिठाई खाई है या नहीं, सवाल यह है कि आज पूरे दिन में कुल कितनी अतिरिक्त चीनी मेरे भोजन का हिस्सा बनी है। फल खाइए, क्योंकि पूरे फल जो है उसमें फाइबर होता है। मीठे पेय की जगह सादा पानी या बिना चीनी वाला पेय चुनने की आदत डालिए। चाय में चीनी धीरे धीरे कम कीजिए। बच्चों को हर छोटी खुशी पर टॉफी, चॉकलेट देने की आदत कम कीजिए। और सबसे जरूरी बात, गुड़ और शहद को भी असीमित मात्रा में खाना सही नहीं है, वे भी शर्करा के ही स्रोत हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें तेल के महत्व की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि तेल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वसा शरीर को ऊर्जा देती है और कुछ आवश्यक फैटी एसिड साथ ही वसा में घुलने वाले विटामिनों के उपयोग में सहायता करती है। इसलिए श्रोता साथियों, भोजन में वसा की कुछ मात्रा आवश्यक होती है। हम देखते हैं कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अन्य खाद्य तेलों का उपयोग भारतीय घरों में लंबे समय तक किया जा रहा है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अलग अलग तेलों की पोषण संरचना है वो अलग अलग होती है, इसलिए तेल का चुनाव करते समय गुणवत्ता और मात्रा दोनों का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि यह धारणा सही नहीं है कि स्वस्थ रहने के लिए तेल को पूरी तरह से बंद कर देना, बल्कि उद्देश्य यह होना चाहिए साथियों कि तेल का उपयोग ही वो हम जरूरत के अनुसार करें और सही मात्रा में करें।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि स्वस्थ भोजन का मतलब केवल नमक कम, चीनी कम, तेल कम कहना नहीं है। स्वस्थ भोजन का मतलब है पूरी थाली को संतुलित बनाना। हमारी थाली में हरी और दूसरी सब्जियां शामिल हो, मौसमी सब्जियां हो, फल, अनाज और मोटे अनाज हो, दाल, चना, मूंग, राजमा जैसे प्रोटीन स्रोत हो, दूध और अन्य उपयुक्त खाद्य पदार्थ हो, जरूरत के अनुसार मेवे और बीज भी हो। श्रोता साथियों, जैसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, जब हम भोजन में विविधता को जोड़ते हैं तो शरीर को अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। इसलिए केवल यह सोचने की बजाय कि नमक कितना कम किया, हमें यह भी सोचना चाहिए कि आज मेरी थाली में सब्जी कितनी थी, फल खाया या नहीं, दाल या अन्य प्रोटीन स्रोत लिए या नहीं। यही सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे, नमक, चीनी और तेल हमारे भोजन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसमें से श्रोता साथियों, किसी को भी बिना आवश्यकता के पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इसका उपयोग संतुलित मात्रा में करना हमारे लिए आवश्यक है। नमक शरीर के लिए आवश्यक सोडियम प्रदान करता है, चीनी ऊर्जा के स्रोत वाले कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा होती है और तेल वसा तथा ऊर्जा प्रदान करता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, इनका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य का मंत्र केवल खाना नहीं है, बल्कि सही मात्रा में सही भोजन करना है। भोजन में नमक कम हो, अतिरिक्त चीनी हो और तेल का उपयोग जरूरत के अनुसार हो। इसके साथ ही श्रोता साथियों, भोजन में दालें, अनाज, सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक पदार्थ हैं, वो भी हमें शामिल करने हैं।
0: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप आज से एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं कि एक सप्ताह का स्वाद संतुलित अभियान चलाएं। पहले दिन घर में इस्तेमाल होने वाले नमक, चीनी, तेल की मात्रा पर ध्यान दें। दूसरे दिन चाय में चीनी थोड़ी कम करें। तीसरे दिन किसी एक तले हुए नाश्ते की जगह घर का हल्का विकल्प बनाएं। चौथे दिन पैकेट वाला नमकीन कम करें। पांचवें दिन सब्जी में तेल नाप कर डालें। छठे दिन पूरे परिवार की थाली देखें और उसमें फल या सब्जी की मात्रा बढ़ाएं। और सातवें दिन परिवार बैठकर चर्चा करें कि क्या हमें स्वाद में कोई कमी महसूस हुई, क्या हम थोड़ा नमक कम, कम चीनी, कम तेल वाले भोजन के आदि हो सकते हैं? यदि छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर बड़ी आदत बनते हैं तो श्रोता साथियों इन्हें हमें हमारे जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि आज की हमारी बातचीत से यह सीख मिलती है हमें कि स्वस्थ जीवन किसी एक महंगे खाद्य पदार्थ से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी सही आदतों से बनता है। नमक हमारे भोजन को स्वाद देता है, चीनी मिठास देती है और तेल भोजन का हिस्सा है, लेकिन जब इनकी मात्रा जरूरत से आगे बढ़ती है तो यही चीजें हमारे भोजन के संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसलिए आज घर लौटकर अपनी रसोई पर एक नजर जरूर रखिए। नमक की डिब्बे से पूछिए कि क्या मुझे सच में इतना नमक चाहिए। चीनी के डब्बे से पूछिए क्या हर कप चाय में इतनी मिठास चाहिए। और तेल की बोतल से पूछिए कि क्या तुम्हें नाप कर इस्तेमाल करता हूँ। अगर इन तीनों सवालों के जवाब में हम थोड़ा सा बदलाव कर पाए तो हमारी थाली भी बेहतर होगी और हमारी खाने की आदतें भी। याद रखिए श्रोता साथियों, थाली में विविधता होनी चाहिए, मात्रा में संतुलन होना चाहिए और यही हमारे स्वस्थ जीवन का सुंदर अनुशासन है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज की कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
4: तो हमरो बोनू अड़ी सब समस्या नु समाधान आपने करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है। पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है। फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी

0: भाइयों ने बोनो जेवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं इन्होंने रक्षा करे है, तो आवो बोननी भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नु भविष्य सुरक्षित करा। बोननी आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है।
1: नई गजल इसके पोएट हैं अब्दुल हमीद आदम मरहूम, तो उनकी गजल पेश कर रहा हूं।

समझ तो गए होंगे कि मैं समझाऊं। हाँ बोलो, मेरा ख्याल समझ गए। हाँ चलो अच्छी बात है। है हुस्न का फुसों भी इलाज फिसुर्दगी, रुख से नकाब उठा कि तबीयत उदास है। हुस्न वाले को कहा जा रहा है कि इलाज, ये इलाज है फसुर्दगी का, बेचारगी का, बीमारी का। बेचारगी बीमारी को नहीं कहते, लेकिन बेचारगी और कई तरह की होती है। हाँ उसका इलाज भी है इसमें।

यात्रा भी पेश करूँगा इसी का चंद मिनट के लिए। ये मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उनके छोटे भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब, इन लोगों का गाया हुआ है, इसलिए मैं इसको बड़ी अकीदत से भी गाता हूँ।

वादा किया था शायद इंटरव्यू में भी और वैसे भी होना ही चाहिए, कुछ नई गजलें जो आप आज ही सुनेंगे वो भी पेश करूंगा और आपकी पसंद की बाकी की जो आपने सुनी हुई है वो भी पेश करूंगा। तो लीजिए पहले सबसे आपकी खिदमत में ये नई गजल है, इसके शायर हैं परेश शहजाद साहब, पेश कर रहा हूँ।

तो साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।